0: Hey, son of plan. Plan एक घड़ी है, Swiss watch. Watch के पुर्जे यानी हम perfect, तो घड़ी भी perfect. Tick tock, tick tock. वरना वही watch चला, bomb बन के हम सबको boom. समझे क्या? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, प्लान एक बार और प्लान.
1: पक गया, थक गया, तू जो भी बोला मेरे सर में अटक गया भाई. छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे, अरे छोड़ना

हमारे प्रिय मनादा बड़े वर्सेटाइल हैं, उनके सामने गाना गाना भी डर लगता है। वो क्लासिकल म्यूज़िक के प्रोफेसर हैं, इतनी अच्छी क्लासिकल म्यूज़िक जानते हैं, समझते हैं और गाते हैं।

0: जोकर।
1: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
2: Toronto!
3: Kaheen mat jaiye.
1: Don't touch that dial.
3: Hum bas yo chale hain.
1: After a short break and a few messages from our sponsors. Stay tuned for more hit Bollywood classics. Timeless melodies and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
4: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट एटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें asiagoldinc.com।
5: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
6: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
7: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
6: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
8: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
9: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
10: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
11: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
10: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
11: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
10: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
11: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
10: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
9: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: आप सुन रहे हैं CMR at 9, मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 11 AM। Stay tuned.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call kare 416-284-7000. 416-284-7000.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
2: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AHA se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
2: Kaheen mat jaiye.
0: Don't touch that dial.
2: Hum bas CEO chale hain.
0: After a short break and a few messages from our sponsors. Stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM,
1: Toronto!
0: We'll be right back!
3: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan Today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. Toronto से just 2 hours north on Highway 400. एक perfect getaway. Grand Departure Resort near Fairy Sound, Muskoka. हर सीजन के लिए perfect destination. Private beach, indoor swimming pool, or stay in cozy, सुंदर cottages and hotel rooms. खाना? हमारे special restaurant में बहुत special cuisines हैं by a brilliant Indian chef. So call today at 705-378-2210. 705-378-2210. क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एटसेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 9 9461000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
4: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे. जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस.
5: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक. QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें.
4: 26 locations across Canada.
6: For more information, visit rajdhanisuites.ca.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें एशिया गोल्ड inc.com.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.

0: आप सुन रहे हैं CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड. कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स. हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स. दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल. दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू. कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड. अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू. लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Easton Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं. और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 9046-1000 for Midland and Sues and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: वही डेली रूटीन में फंसे हैं। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट, ये फेरी साउंड मुस्कोका, हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीज हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
0: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें एशिया गोल्ड inc.com.
1: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se aur call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
2: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
1: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.

0: CMR at 11. Only on CMR 101.3 FM.
1: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAJ se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
3: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
4: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: बीच।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
2: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
3: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
2: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
5: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट एटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 416-746-3795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें एशिया गोल्ड inc.com।
6: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
7: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: FM.
1: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000।
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। सो कॉल टुडे एट 705-378-2210, 705-378-2210।

0: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें asiagoldinc.com।
1: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAJ se aur call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: at 11. Only on CMR 101.3 FM.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर.
5: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन. प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210. 705-378-2210.
6: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: राजधानी।
1: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
2: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
1: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
4: Cashpoint, one stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
5: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: At 11, only on CMR 101.3 FM.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, जहां news, views, sports, entertainment की खबरें होंगी बिल्कुल unlimited. Entertainment तो बहुत है, लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल unlimited. News और views तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल unlimited.
1: यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? मेरा ही जलवा.
0: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
2: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
0: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
3: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके
0: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। बाहर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 29, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट 27 डिग्री सेल्सियस विद अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल सन एंड ग्रास पोलन डिक्रीजिंग टुमारो एंड सनसेट होगा 8:18 PM, 8:18 पर होगा सनसेट। यूवी विल बी वेरी हाई, इंक्रीज फ्रॉम यस्टरडे एंड टुमारोज टेम्परेचर्स अ लिटिल बिट ऑफ रेन मे बी एक्सपेक्टेड, 28 डिग्रीज मैक्सिमम, वेंसडे 26 एंड थर्सडे 26। ब्यूटिफुल वेदर रहा है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। वी डिड नॉट गेट दोज क्रेजी 30+ डिग्री वाले टेम्परेचर्स, मिड 30s वाले। ए क्यू आई टुडे इज रियली गुड एट 29। एंड जय हो गीत आपको पसंद आया एंड आप ही की रिक्वेस्ट थी, सो मैंने सोचा कि भाई 15th ऑफ ऑगस्ट इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑन सैटरडे, सो लेट्स स्टार्ट द मंडे विद जय हो। सुखविंदर सिंह की आवाज़ में स्लम डॉग मिलियनेयर वॉज द फिल्म। फ्राइडे को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे धूमधाम से मनाया गया इन पाकिस्तान, अवे फ्रॉम पाकिस्तान यहाँ पर भी कई इवेंट्स हुए हैं। सैटरडे को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, 80th इंडिपेंडेंस डे को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। एंड you know, it's always people when we are away from home or Republic Day ho, Independence Day ho, to us waqt ke liye ek aisa hota hai ki bhai us 24 ghante ke liye if we could be back home celebrating with our loved ones and relatives, but yahan par bhi jis tarah se hamari Indian Pakistani community hai use bade dhoom dham se hi celebrate karte hain. Rajdhani Sweets and Restaurant, 30+ locations, 100% pure vegetarian food, zabardast mithaiyon ka dusra naam in GTA, beyond GTA, Rajdhani Sweets and Restaurant. Brampton TV and Appliance pe Sultan ji ne amazing deals ka aagaz kar diya hai. TV, appliance, laundry aapne khareedna hai, chahe jitni shop around karna hai kar lijiye, phir uske baad aapne pahunchna hai 801 Bouvet Drive West at the corner of Bouvet and Chikusi in Brampton. They're open 7 days a week, 11 a.m. to 7 p.m. BramptonAppliances.com, Brampton TV and Appliances. And 12:15 hamari headlines hai, Monday ka din hai, today is August 17th, and 12:15 ki headlines ke baad takriban 1:15, 12:45 Sky Lake Immigration se Manan Gupta ji honge hamare saath with the latest federal, municipal as well as provincial updates as well as immigration update from Sky Lake Immigration lekar aa jayenge Manan Gupta ji. Sky Lake Immigration ka number 416-451-0040. Brampton TV and Appliances Sultan ji will be with us, Kavya Home Care se Meeta Oza and Will Lifetime Trading se Mohammed Saab bhi honge hamare saath, unse bhi hogi baatcheet. Woman drowns after being swept away at Jack Darling Park, Mississauga se ye khabar samne aayi hai. Etobicoke mein police find man who had been assaulted after responding to shooting. Islington aur Elmhurst Drive ke kareeb ye khabar samne aayi hai. And Brad Bradford calling for mandatory addictions treatment. And mayor ki race mein ab number 2 par chal rahe hain Brad Bradford, number 1 par Olivia Chow chal rahi hain. And ab Bradford jo hain kafi alag alag announcements apni taraf se kar rahe hain ki bhai agar main mayor bana Toronto ka to there will be lot of changes that I will bring and so on and so forth. Aise karte hain, choti si yahan pe break lete hain and 12:15 ki hum headlines lekar foran aate hain wapas.
1: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा, आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.49% से फॉर 36 मंथ्स। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, पीसीबी इन स्टॉक आपकी इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस के लिए, वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com, लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.
2: Hi Anju, kaisi ho? How's your son doing?
3: Nisha, pooch mat. Sara din computer, TV, phone par laga rehta hai. Aankhein to kharab hongi hi. Homework ke time battery gul.
2: Main samajh gayi. Use chahiye prescription wale smart glasses from Clear Optical.
4: She's right. Chahe bacche ho ya bade, wear smart glasses every day. Ye prescription smart glasses aapke kharab hote vision ko stabilize kare bina kisi bhi stress and fatigue on your eyes. Visit 8005 Financial Drive, Brampton, 905-457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.
5: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
6: अजी याद है। अच्छा उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
5: अजी इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा cholebhature.ca पे चलो।
7: cholebhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। cholebhature.ca कॉल 9054582448।
8: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 in Mississauga and 1 by Vaughan Mills.

0: Joshi.
1: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters. 289-748-4040 289-748-4040.
2: आदाब, मैं आप सबको तहे दिल से दावत देना चाहती हूँ शाम रेख्ता में. शाम रेख्ता रेख्ता फाउंडेशन का एक खास ऑडिटोरियम कॉन्सेप्ट है. ये सिर्फ एक शो या कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि उर्दू के हुस्न, उसकी तहजीब और उसकी रूह के साथ गुजारी हुई एक यादगार शाम है. 19 सितंबर, लिविंग आर्ट सेंटर, मिसिसागा. बुक योर टिकट्स ऑन टिकटमास्टर.
3: जेनेसिस मार्कम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो. ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 GV70 या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर अप टू 39 months. Book your test drive today. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
4: Good afternoon. Shuru karte hain South Asian Unlimited Radio ki taza tareen headlines.
1: Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Brampton TV and Appliances, Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Homeo Care, Rajdhani Sweets and Restaurant, McVean Dental Care, and Win Lifetime Trading. Shuru karte hain taza tareen headlines. India ne 1900 crore rupay ki deal sign ki to lease 2 MQ-9B Sea Guardian drones. Donald Trump ne Hormuz par di warning, agar Oman raaste mein aaya to US ki bombing के लिए तैयार रहें. मोरक्को के माइग्रेंट्स ने स्पेन में प्रोटेस्ट किए एंड असाइलम की मांग भी की. 2 हफ्ते पहले 72,000 लोगों ने मास बॉर्डर क्रॉसिंग्स की थी. डोनाल्ड ट्रंप एनवॉय ने गाजा प्लान पर हमास लीडर से की मुलाकात. अगली मुलाकात पीएम नेतन्याहू से होगी. एंड यूएस के केंटकी के पार्क में हुई शूटिंग में एक शख्स की मौत हुई. चार घायल भी हुए, उसमें बच्चे भी शामिल थे. इटालियन म्यूजियम से 4 पुरानी पेंटिंग्स स्टोलन. एंड प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्लान का बड़ा दावा किया था. हिज सोर्स वॉज अ फेक पोस्ट. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पिछले 3 डेकेड से इंटरनेशनल स्क्रूटनी हुई है, जबकि तेहरान ने इंसिस्ट किया है कि इट इज़ फॉर सिविलियन पर्पसेस ओनली. ईरान ने बाउंटी का ऐलान किया. डबल पे फॉर वेमेन, यूएस सैनिक को किल करें एंड गेट $30,000. फ्लाइट मिक्सअप के बाद 2 अमेरिकन एयरलाइन जेट्स क्लाइड होते बचे. कंट्रोलर प्रिवेंट्स द डिजास्टर. लोकल समाचारों में माइक लेटन ने टोरंटो सिटी काउंसिल में वापसी का प्लान बनाया. जैंजीबार टैवर्न में 3 अलार्म फायर रिपोर्ट की गई. सेलेंटिस अपने आइडल्ड ब्रैम्पटन प्लांट को क्लोज या सेल करने की सोच रहा है. एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के लॉक क्लासरूम्स में लैपटॉप्स विल बी बैंड. मैन चार्ज विद अनप्रोवोक्ड स्टैबिंग ऑफ टीटीसी वर्कर. एंड वॉन क्रैश में मोटरसाइकिलिस्ट मारा गया. मिसागा हाउस फायर से एक शख्स पहुंचा अस्पताल. भारतीय समाचारों में राम माधव को बीजेपी 3.0 में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया. स्मृति ईरानी को 8 नेशनल जनरल सेक्रेटरीज में से एक बनाया गया. इंडियन आर्मी चीफ अवार्डेड ऑनररी जनरल रैंक ऑफ नेपाल आर्मी. बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस को किया टारगेट और कहा वन फैमिली वन टिकट फॉर्मूला ही होना नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस शुड नॉट गिव 2 टिकट्स टू मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, क्योंकि ये बिल्कुल गलत होगा. आईपीएस ऑफिसर की मां को उत्तर प्रदेश में मारा गया. घर से ज्वेलरी भी लूटी गई. झारखंड गवर्नमेंट ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को इनवाइट किया फॉर फ्रेश टॉक्स टुडे. कर्नाटका में 3 पोचर्स के मारे जाने पर डिबेट शुरू हुआ. तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय का कहना है कि दे वर ऑल तमिल्स। टेरर प्लॉट अवर्ट किया गया। अमृतसर में कॉप्स को मिला बॉम्ब और टाइमर इन अ सस्पिशियस पैकेट। दिल्ली मेट्रो में हुआ केओस जब एक पैरामिलिट्री ऑफिशियल ने एक महिला की पिक्चर ली, पकड़े जाने पर इनकार भी किया था। हरसिमरत कौर बादल ने सुखबीर बादल अटैक पर एंटी टेरर प्रोब की डिमांड की। कैमरा में हुआ कैद। सैनिटेशन वर्कर स्टैब टू डेथ कलीग स्टेज प्रोटेस्ट। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीजेपी 3.0 को कंग्रेचुलेट किया, बोले इससे एनर्जी और ग्रास रूट्स कनेक्ट सामने आएगा। अमित मालविया आउट। बीजेपी ने दीपक मास्के को सोशल मीडिया कन्वीनर अपॉइंट किया। दूसरी ओर पाकिस्तान की खबरों से, राणा सनाउल्लाह ने दावा किया कि एजेके पोल्स में पीएलएम नून क्लिंच्ड 2/3 मेजॉरिटी। बलोचिस्तान के किलीज एक आईबीओ पर 2 आतंकी मारे गए। एजेके के 8 असेंबली रिजर्व्ड सीट्स के इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान हुआ। फाइनल लिस्ट 23 अगस्त को इशू होगी, फॉलोड बाय पोलिंग ऑन 24 अगस्त। एमक्यूएम लीडर मुस्तफा कमल ने कहा कि न्यू प्रोविंसेस की अमेंडमेंट आएगी विदाउट राणा सनाउल्लाह नोइंग। कैबिनेट ने 26 और 27 अमेंडमेंट्स को डिस्कस नहीं किया बिफोर दे इमर्ज। पीपीपी को डिसप्लेजर एक्सप्रेस करना लाजमी है। सिंध मिनिस्टर ने कहा कि खालिद मकबूल अंडर सिवियर मेंटल प्रेशर। डॉक्टर पॉल जेकब भट्टी को ऑनर किया गया विद तमगा इम्तियाज फॉर प्रमोटिंग इंटरफेथ हार्मनी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि डॉक्टर भट्टी ने डेकेड्स लॉन्ग वर्क किया है। पेट्रोलियम लेवी और राइजिंग इन्फ्लेशन के खिलाफ जमात इस्लामी ने मेजर सिटीज में सिटिंस यानी धरने किए। कराची रैली फवारा चौक पहुंची। लाहौर प्रोटेस्टर्स ने मॉल रोड पर किया मार्च। मेट ऑफिस ने अपर और सेंट्रल पार्ट्स के लिए एक्सटेंडेड बारिश और थंडर शावर्स की फोरकास्ट की है। अडियाला जेल रिपोर्ट के अनुसार ट्रीटमेंट के बाद से इमरान खान की आई विजन ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई है। ट्रंप ने पाकिस्तान सऊदी तुर्की के डिफेंस पैक्ट को बोल्ड और इम्पॉर्टेंट कदम बताया। स्पोर्ट्स जगत से, श्रीलंका के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट में सोनल दिनुषा के 100 के बावजूद इंडिया ने कमांडिंग लीड ले ली है। बांग्लादेश से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स प्रेज्ड ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन फॉर हिज फाइटिंग सेंचुरी इन अ लूजिंग एफर्ट। फातिमा सना टू लीड पाकिस्तान इन विमेंस एशिया कप एंड एशियन गेम्स 2026। एंड डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया को बाउंस बैक करने पर सपोर्ट किया और डेविड वार्नर ने कहा देयर विल बी अ ह्यूज रिस्पॉन्स। एंड बॉलीवुड खबरों से, हेमा मालिनी ने सनी डियोल की फिल्म बंटवारा 1947 को रिव्यू किया एंड कॉल्स इट सिंपली ब्रिलियंट। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल स्नब पर मिथुन चक्रवर्ती ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने नहीं बुलाया होगा क्योंकि मैं तो बहुत ही

0: 2026 GV70 या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर अप टू 39 मंथ्स. बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
1: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन, 6477602779, 6477602779। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर पहुंच चुके हैं काव्या होम्योकेयर गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ अमिता ओझा पिनाक ओझा जी, 10 कॉट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104 ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं फॉर ओवर अ डेकेड नाउ। नॉर्थ पार्क एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन है। क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग। नंबर एक ही है, 6477602779। वॉक इन करें, अपॉइंटमेंट बनाएं या फोन पर कंसल्टेशन भी की जा सकती है, दवाई आपको शिप कर दी जाएगी। मीता जी आपका स्वागत है।
1: जी सनी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैम छो
0: जी, मजामा, गुड आफ्टरनून। मीता जी, आज स्पेशल मंडे वाले हेल्थ सेगमेंट में किस टॉपिक पर करेंगे बातचीत?
1: जी आज देखेंगे वर्टिगो, चक्कर की प्रॉब्लम, उसके बारे में
0: जी।
1: सो वर्टिगो इज अ सिम्टम ऑफ अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन। तो ये एक फीलिंग है जिसमें आपको फील होता है आप खुद या आपके सराउंडिंग्स मूव हो रहे हैं, एक्चुअल में कोई मूवमेंट नहीं होती है। आपको लगता है कि बैलेंस खो देंगे वाली जो फीलिंग है, या स्टमक में सिंकिंग सी फील करते हैं। सुबह आप उठे हो तो उसके साथ ही जैसे ही आपने सिर को टर्न किया तो उसके साथ वर्टिगो स्टार्ट हो गए, या फिर बैठ के उठने से आपको चक्कर आ रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इसको वर्टिगो की प्रॉब्लम कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कानों के अंदर छोटे छोटे टाइनी क्रिस्टल्स होते हैं, ये जब फ्लूइड से भरी कैनाल में गिर जाते हैं कोई झटका करके, कोई चोट लगने के साथ, तो उसके साथ क्या होगा, जैसे ही आप स्टैंड अप करते हो, आप टर्न करते हो, तो आपके ब्रेन को गलत सिग्नल्स मिलेंगे, वो कंफ्यूज फील करेगा और फिर उसके साथ आप डिजी फील करना स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ नॉशियस फीलिंग है, और ये वर्टिगो का अटैक जो है कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स तक रुकेगा, तो उसके बाद सही हो जाएगा एंड थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वापस हो गया। जिन लोगों को क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन है, कान के पर्दे में छेद हो जाना या इनर ईयर में इन्फ्लेमेशन करके भी काफी बार ये प्रॉब्लम पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर टाइम यहाँ के वेदर के हिसाब से जो कंडीशन पेशेंट्स में पाई जाती है वो है जिसको हम मेनियर्स डिजीज कहते हैं, यानी कि ईयर फ्लूइड इम्बैलेंस। अब ईयर फ्लूइड इम्बैलेंस करके क्या होगा कि एकदम से ही चक्कर का एक आपको अटैक होगा और उसके साथ नॉशियस फीलिंग है, जैसे वॉमिट हो जाएगी या फिर कानों में आवाजें आनी स्टार्ट हो जाएगी, कोई भी एक साइड के ईयर में, दोनों ईयर्स में या ब्रेन में वो सुनाई देती है अंदर हेड में। और ये अटैक जो है आप के कुछ दिनों के लिए रुकेगा, उसके बाद ये सही हुआ, लेकिन अगेन विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन अ ईयर फिर से आपको ये अटैक होगा, एंड देन उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी दोनों बढ़ते जाते हैं और हर वक्त आपको जैसे वर्टिगो की प्रॉब्लम रहती है। और उन लोगों को भी जिनको नेक में आर्थराइटिस है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, बार बार गर्दन आपकी अकड़ रही है, तो उनको क्या होगा, जैसे ही अकड़न स्टार्ट हुई उसके साथ ही चक्कर आने स्टार्ट हो गए, डिजी फील होना, लाइट हेडेड फील होना, हवा में चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, जैसे कुछ स्पंज सा है आपके पैरों के नीचे, तो ये फीलिंग आएगी और इसको भी हम वर्टिगो ही कहते हैं, बैलेंस प्रॉब्लम।

0: जो कहा जाता है। सो बैलेंस डिसऑर्डर्स आपको नेक की कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ भी पाए जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उससे भी होगा। सो यहाँ पे इसके ट्रिगर्स भी हो सकते हैं कि कोई हेड इंजरी आपको हो गई या प्रेशर चेंज हुआ कि एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके साथ ये ट्रिगर हो जाना, कानों की इन्फेक्शन हुई तो उसके साथ भी ये ट्रिगर हो सकते हैं। स्ट्रेस एंड एंजाइटी कैन ट्रिगर योर वर्टिगो। तो ये जो ट्रीटमेंट है इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। आप स्टार्ट करोगे उसके साथ ही देखोगे कि जो आपको वर्टिगो की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी है वो कम होना स्टार्ट हुआ, साथ में हियरिंग लॉस है या फिर टिनाइटस यानी कि आवाज आ रही है कानों के अंदर, नॉशियस फीलिंग, वॉमिटिंग है, वो सारा कंट्रोल में आता जाएगा और कुछ ही मंथ्स के ट्रीटमेंट से आप वर्टिगो फ्री हो सकते हैं। सो फील फ्री टू कॉल अस कोई भी एक्यूट क्रोनिक डिजीज के लिए। काव्या होम्योकेयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। और इसके अलावा जुकाम, खांसी, कोल्ड फ्लू हो जाना, 1 वीक 2 वीक्स की मेडिकेशन, छोटे बच्चों में टीदिंग वगैरह की मेडिकेशन चाहिए, अपनी प्रिस्क्रिप्शन रिफिल करवानी हो या फिर लीवर क्लिंजिंग टिंचर्स आर अवेलेबल, किडनी क्लिंजर्स आर अवेलेबल। सो कोई भी हेल्थ कंसर्न के लिए काव्या होम्योकेयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, काव्या होम्यो केयर एंड जहां पर गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपे अमिता ओझा पिनाकोझा जी 6 डेज़ अ वीक आपके लिए अवेलेबल हैं, 10 Cottrell Boulevard, Unit 104, ब्रैम्पटन, नॉर्थ पार्क एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन। मंडे टू सैटरडे क्लिनिक इज ओपन 10 AM टू 6 PM एंड द नंबर टू कॉल इज 6477602779। वॉक इन भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली पीपल दैट लिव रियली फार ऑफ फोन पर कंसल्टेशन करें, दवाई आपके घर पहुंच जाएगी। 6477602779। मीता जी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सनी जी।
1: थैंक यू जी। एंड छोले भटूरे .ca 4 लोकेशन से दिल्ली वाले वर्ल्ड फेमस छोले भटूरे सर्व करते हैं, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, टेक आउट डाइनिंग ऑप्शन अवेलेबल है हर लोकेशन पर। छोले भटूरे .ca आपने सिर्फ याद रखना है। मैं चाहता हूँ आपके ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के ना पैसे की बचत हो जाए, और जिसके लिए आपने गुरविंदर बामरा जी को कॉल करना है। ऑल स्टेट के लिए काम करती हैं, होम एंड ऑटो इंश्योरेंस में जबरदस्त रेट्स ऑफर कर रही हैं। नया लाइसेंस मिला है, आप अभी जो यंग ड्राइवर्स होते हैं उन्हें कई बार अच्छे रेट्स नहीं मिलते, उसके ऊपर से अगर आपके पास 2 गाड़ियां हैं, होम है, यू कैन सेव एट एन एवरेज ऑफ $2100। कॉल गुरविंदर 6473033207। कुमार सानू अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में, नदीम श्रवण का म्यूजिक, समीर के लिरिक्स और ब्यूटीफुल सा सॉन्ग फ्रॉम द मूवी आशिकी, इंजॉय। और बाय द वे अवारापन 2 ने ज़बरदस्त ओपनिंग ली ऑन द वीकेंड एंड इट ब्रोक अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स। इमरान हाशमी का करियर बैक ऑन ट्रैक है, मूवीज ऑलरेडी मेड अबाउट 80-85 crores in 3 days। दूसरी तरफ सनी डियोल की बंटवारा नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर।

0: दिस सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन। एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days अ वीक, 905-457-3232। फॉर नेम ब्रांड सनग्लासेस, ऑलवेज रिमेंबर क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा। द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट यू बाय होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर्स सरबजीत गिल, सीपी चटवाल, फॉर रियल स्टेट बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स। एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज दैट दे हैव इन द रेंज ऑफ 700,000 and 800,000 इन ब्रैम्पटन, इन GTA, Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 या 416-627-4737। And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, जो कि 30+ locations से serve करते हैं 100% pure vegetarian food, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम Rajdhani Sweets and Restaurant। अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, 416-746-3795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें AsiaGoldInc.com।
1: डॉन वैली नॉर्थ हंडे के हंडे अपग्रेड योर राइड सेल्स इवेंट का फायदा उठाइए। सिर्फ 0.99% से फाइनेंसिंग और साथ में 90 दिन तक कोई पेमेंट नहीं, और पाए $1,000 तक का अपग्रेड बोनस भी। ऑफर सिर्फ August 31st तक है। At डॉन वैली नॉर्थ हंडे, वी स्पीक योर लैंग्वेज। विजिट DonValleyNorthHyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamberg.
2: Don Valley North Hyundai,
1: a proud member of Wayne's Auto Group.
0: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। रिमेंबर, यू आर इन गुड हैंड्स विद ऑल स्टेट। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave इन Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
3: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
4: निशा, पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है। आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
3: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
5: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 905-457-3232। क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा।
0: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 647-866-1086 राज जोशी, नाम ही काफी।
6: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com। A proud member of Wayne's Auto Group।
7: मम्मा इस पर मैं भी कृष्णा बनूंगा
8: और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी।
3: अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
5: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
9: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाहर का तापमान तकरीबन 26 डिग्री सेल्सियस है, फील्स लाइक 30 एंड नाइस ब्यूटीफुल डे। और उसी तरह के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से आपकी रिक्वेस्ट जो हैं वो आ रही हैं, वील प्ले दैट एज वेल। मोटरसाइकिलर डाइज आफ्टर क्लाइडिंग विद अनदर व्हीकल, रदरफोर्ड और वेस्टर्न रोड के इलाके में वॉन से ये खबर सामने आई थी। एंड काफ़ी मोटरसाइकिल्स की मौत हुई है ये पिछले कुछ महीनों में। एंड एक महिला भी ड्राउन हुई है आफ्टर बींग स्वेप्ट अवे एट जैक डार्लिंग पार्क इन मिसागा। किशोर कुमार साहब की आवाज़ में एक अजनबी हसीना से ब्यूटीफुल सॉन्ग इंजॉय करें फिर ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंस से। सुल्तान जी भी होंगे हमारे साथ।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940। मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 6478631940, 6478631940।
1: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
2: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।
3: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों?
5: नया इलाका और नया घर,
4: अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
6: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं कहां, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस। सुल्तान जी हमारे साथ हैं, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन। ओपन 7 days a week, 11 AM to 7 PM, 905-450-2828, एंड द बेस्ट प्राइसेस यू गेट फॉर टीवी, अप्लायंस, लॉन्ड्री इन GTA, इन सदर्न ओंटारियो, ओनली वन प्लेस, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज। सुल्तान जी आपका स्वागत है।
7: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
6: सुल्तान जी, सबसे पहले मैं टीवी सेक्शन की ओर रुख करूंगा, क्योंकि गूगल टीवीज के नए फीचर्स आ चुके हैं एंड नए फीचर्स में पीपल लव दोस टीवीज, लेकिन साथ ही साथ प्राइसिंग, व्हाट न्यू प्राइसेस डू वी हैव, अमेजिंग प्राइसेस डू वी हैव फॉर द लिसनर्स?
7: जी सनी भाई, गूगल फीचर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसकी रीजन ये है कि बिल्कुल जैसे आपके स्मार्टफोन में, सेल फोन में आपको ऐप स्टोर मिलता है, गूगल फीचर्स में भी आपको ऐप स्टोर मिलता है और अनलिमिटेड ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोमकास्ट बिल्ट इन है इन टीवीज में, 4K UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 4K स्मार्ट टीवी है ये, और ये 50 इंच सिर्फ 299 में, 55 इंच सिर्फ 399 में,
6: क्या बात है,
7: 65 इंच सिर्फ 599 में,
6: वाओ,
7: और 75 इंच सिर्फ 699 में,
6: माय गॉड,
7: द लोएस्ट प्राइस गारंटी ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से मिलेंगे आपको। अगर कोई भी हमारे ऐसे बहन भाई जो इवन इंस्टॉलेशन के इंडस्ट्री में है, इंस्टॉल करते हैं, किसी को रेस्टोरेंट के लिए अपने मेन्यू डिस्प्ले के लिए टीवी चाहिए, तो 50 इंच 299 में परफेक्टली उनके लिए ये स्पेशल प्राइस है। रेगुलर अगर किसी को अपने घरों में चाहिए तो ये लोएस्ट प्राइस गारंटी है। इसके साथ साथ हमारे पास बिग स्क्रीन टीवी में 98 इंच पे $1500 कस्टमर सेव करेंगे, क्योंकि 98 इंच सैमसंग सिर्फ 1999 में ऑफर किया जा रहा है। इसकी $3500 प्राइस थी, लेकिन 1999 में लेके $1500 कस्टमर सेव करेंगे और 1999 भी 6 मंथ में पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 85 इंच में सोनी ब्रेविया मॉडल है हमारे पास, सोनी ब्रेविया 3 2026 का लेटेस्ट मॉडल है, $2200 वाला, 1599 में मिलेगा। इसमें भी $700 कस्टमर सेव करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको विजिट करना है जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड, ब्रैम्पटन अप्लायंसेस, ये वन वर्ड है जी, BramptonAppliances.com। हमारी वेबसाइट विजिट कर लें, कॉल करके नाम एंड नंबर दे के जो भी टीवी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे होल्ड करवा लें, शोरूम में आके चेक करें, कंपेयर करें, फिर डिलीवरी स्केड्यूल करें जी 905-450-2828, 905 450 2828 28 28
6: जी, जहां पर आपने इतने जबरदस्त टीवी सेक्शन की डील्स दे दी हैं सुल्तान जी, अब प्रेशर जो है और बढ़ गया है, क्योंकि अप्लायंस लॉन्ड्री में भी हमें इसी तरह की अमेजिंग अमेजिंग डील्स चाहिए।
7: जी डेफिनेटली जी, हमारे पास अगर बंडल पैकेज कोई कस्टमर खरीदते हैं तो $2000 तक की सेविंग गारंटी वो करेंगे, क्योंकि फ्रिज स्टोव डिशवाशर थ्री पीस किचन बंडल $5000 वाला $29.99 में मिलेगा, $2000 सेव भी कर लेंगे और $29.99 सिक्स मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, अल्ट्रा लार्ज कैपेसिटी, अल्ट्रा फ्रेश वेंट सिस्टम के साथ फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर आपको जी स्पेशल प्राइस पे $2200 से $1599 का मिलेगा और $1599 भी आप सिक्स मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर, ये स्पेशल प्राइस पे आपको $1700 वाला $1099 में पेयर मिलेगा, वॉशर ड्रायर दोनों $1099 में और $1099 आप सिक्स मंथ में पे करेंगे। जरूर विजिट करें बोवेड एंड चिंकूजी पे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। जो कस्टमर सिंगल सिंगल पीस लेना चाहते हैं वो भी मिस ना करें, क्योंकि हमारे पास स्टैंडिंग फ्रीजर इस वक्त स्पेशल प्राइस पे है $1400 वाला सिर्फ $799 में। सिंगल पीस वॉशर लेना है सिर्फ $599 में। सिंगल पीस ड्रायर चाहिए सिर्फ $499 में। फ्री होम डिलीवरी के साथ सिक्स मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान है जी। BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, वहां आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी मिलेगी, प्रोडक्ट के फीचर्स भी देख सकते हैं, प्राइस कंपेयर भी होगी और जब वॉक इन करेंगे तो वॉक इन कस्टमर के लिए जो एडिशनल डिस्काउंट है उसका भी फायदा उठाएंगे। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट पे आना है जी, 9054502828 हमारा नंबर है, 9054502828 जी।
6: जी 9054502828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। एंड जाने से पहले वेरी क्विकली सुल्तान जी, पिक ऑफ द वीक, जो चीजें आपको लगता है कि भाई इसको तो मिस करना किसी भी सेक्शन में, ऑल थ्री सेक्शंस में, दैट पिक ऑफ द वीक जो आप चाहते हैं कि हमारे लिस्टर्स जरूर आके परचेज करें।
7: बिल्कुल जी, 50 इंच टीवी $299 का पिक ऑफ द वीक है, 55 इंच टीवी $399 में पिक ऑफ द वीक है, इसी तरह वॉशर $599 में पिक ऑफ द वीक है, ड्रायर $499 में पिक ऑफ द वीक है, इसी तरह डिश वॉशर $1000 वाली स्टेनलेस स्टील की $499 में पिक ऑफ द वीक है, क्योंकि ये 50% डिस्काउंट पे है। तो जरूर विजिट करें और सबसे बेस्ट चीज ये है कि फ्री होम डिलीवरी है और सिक्स मंथ में कस्टमर पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आपको विजिट करना है BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट पे, या फिर शोरूम में 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड, 9054502828 9054502828 जी।
6: बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
7: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
6: जी। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।
8: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, 416-746-3795 एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें एशिया गोल्ड इंक .com
9: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.49% से फॉर 36 मंथ्स। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, बीजीबी इन स्टॉक आपकी इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस के लिए। वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट मार्कम पर। Proud member of Vane's Auto Group.
10: क्रेडिट कार्ड जीएसटी या कर्जों की समस्या हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए ऑल डेट सॉल्यूशंस मोहम्मद सिद्दीक 4166710577 4166710577 alldebtsolutions.ca
11: इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियाँ। इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर दुर्बा फ्लावर्स इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर। तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं खुशियों की भी आराधना कीजिए। इट्स ऑल अंडर जीटीएस बिगेस्ट डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808।
12: जेनेसिस मार्कम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो। ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 GV70 या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर अप टू 39 मंथ्स। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट मार्कम। Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
13: जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 647-863-1940। Till then, goodbye and God bless, ladies and gentlemen.

मुस्कुराइए दिल से, छूनिए साथ साथ, गुनगुनाइए जरा प्यार से, डालिए हाथों में हाथ, बस वॉल्यूम बढ़ाइए और लवी डवी अंदाज में हमसे जुड़ जाइए। हर मूड का म्यूजिक, नए पुराने सुरीले गाने, लवी डवी फिल्मी बातें, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के अफसाने, रेडियो टोरंटो कनाडा आरटीसी, हर दिल की धड़कन, हमारी आपकी बातों का रंग, ये है आपका अपना शो आमिर और शिवानी की आवाजों के संग। आमिर और शिवानी की आवाजों के संग।

मंडे से फ्राइडे दोपहर 2 से 3 बजे तक। तो माहौल बनाइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और लवी डवी हो जाइए। RTC रेडियो टोरंटो कनाडा 416-303-3639।

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदेद। मैं हूँ शिवानी आपके साथ, और आमिर और शिवानी के साथ शुरू हो चुका है रेडियो टोरंटो कनाडा का ये आफ्टरनून ड्राइव टाइम शो। बड़ी खूबसूरत सी आफ्टरनून, 25 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर राइट नाउ। क्लाउडी वेदर कंडीशन, फील्स लाइक 30 डिग्री सेल्सियस। कैसे हैं आप? उम्मीद है आपका जो वीकेंड है वो बड़ा अच्छा गुजरा होगा। कहते हैं ना, एक आलस वाली चाय, एक देखी हुई फिल्म, एक सुस्त सी झपकी, एक अधपढ़ी सी किताब, इसी में गुजर गया एक हफ्ते। किश्त भर के जो खरीदा था वो इतवार अभी तो आया था, न जाने किधर गया। कोई बात नहीं साहब, इतवार चला गया, लेकिन बहुत खूबसूरत से गानों के साथ, गोल्डन 50s, मेमोरेबल 60s, सेंसेशनल 70s, रॉकिंग 80s, म्यूजिकल 90s एंड ट्रेंडिंग मेलोडीज के साथ चलेगा ये सफर आपके हमारे साथ। 416-303-36 39। नमस्कार, एक बार फिर से वेलकम।

0: Show, driving you home, a melody above and beyond, brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
1: It's 24 degrees, mostly sunny weather conditions as well. प्राइम हो चला है 2:07 का और आप एंजॉय कर रहे हैं खूबसूरत से गाने। 90s की मेलोडी आपके लिए पेश की गई, खुद गर्ज फिल्म का ये गाना नीलम और गोविंदा पे फिल्माया हुआ और फिल्म का नाम खुद गर्ज और बहुत खूबसूरत सा गाना था। म्यूज़िक का एक भाई एक अलग ही जादू होता है क्योंकि यू नो people, they tend to develop an emotional bond with music because when people walk away, music is all that is left. जब इंसान जिंदगी से कभी चले भी जाते हैं वो इंसान आपके साथ जिंदगी में नहीं रहता, लेकिन जो म्यूजिक है वो हमेशा उस इंसान को आपके साथ जोड़े रखता है, बहुत ताकत होती है म्यूजिक में। और वैसे भी हमारा जो कभी ना कभी होता है ना, हम गाना सुनते हैं तो ये लगता है ये तो हमारा फेवरेट सॉन्ग था, ये हमारा पसंदीदा गाना था। तो हमारा जो फेवरेट सॉन्ग है, दिस इज प्रोबेबली आवर फेवरेट बिकॉज वी एसोसिएट इट विद एन इमोशनल इवेंट इन आवर लाइफ, कि ये गाने को हमने तब सुना था, ये मूवी हम तब देख रहे थे, हर एक उस गाने के साथ आपकी मेमोरीज अटैच्ड होती हैं, इसलिए वो गाना जो है ना आपको अच्छा लगता है, आपका पसंदीदा गाना हो जाता है। और म्यूजिक इन जनरल इट्स सो influential on the brain that you know the type of listen to actually has the ability to change the way you think and look at the world. अब जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं आपका perspective है वो change हो जाता है, music में वो ताकत होती है और music आपके situation को बदल देता है, आपके mood को बदल देता है, इसलिए तो हम आपके लिए अलग अलग दौर के cinema के अलग अलग दौर के music लेकर आते हैं, सुनहरे दौर के, musical दौर के, सेंसेशनल दौर के नए नए गाने, है ना। तो ऐसे ही गाने सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, आमिर और शिवानी के साथ, आप हैं रेडियो टोरंटो कैनेडा पर, स्टे ट्यून्ड।

0: रेडियो टोरंटो कनाडा, 2:11 का वक्त है और आप हैं आमिर और मेरे यानी शिवानी के साथ। और अब आपको बहुत ही जरूरी जानकारी की तरफ लिए चलते हैं। दोस्तों, जिंदगी बड़ी खूबसूरत नजर आती है, जिंदगी बहुत प्यारी नजर आती है। हम हमेशा रोमांटिक बने रहना चाहते हैं। कहते हैं ना कि रोमांटिक बने रहिए जनाब, उम्र का बोझ अपने आप कम हो जाएगा। और ये बोझ तब अच्छा लगता है जब हमारे ऊपर कर्जों का बोझ ना हो, और अगर हमें अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए लोन भी लेना पड़े तो वो बिना किसी इंटरेस्ट के आप आसानी से पे कर पाए। और ये लोन हमारे लिए लेकर आते हैं यूनी ग्लोबल एडवाइजरी से सारांश नागपाल जी। जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम अपने आप ही खुश हो जाते हैं, मुस्कुरा देते हैं। और क्यों मुस्कुराते हैं, किस नंबर पे आप ये फोन करके मुस्कुरा सकते हैं, इन सब की जानकारी के साथ आइए नागपाल जी का वेलकम करेंगे। नागपाल जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: ठीक जी, सभी को सलाम हमारी तरफ से। एंड बड़ा अच्छा मौसम है आज, होपफुली सब एंजॉय कर रहे होंगे।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, अगस्त का महीना भी बस करीब करीब 2 हफ्ते से भी कम वक्त में हमें अलविदा कह जाएगा।
1: हाँ जी, हाँ
0: लेकिन
1: जी,
0: आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, हर एक मौसम को आप बहुत खूबसूरत मौसम बना देते हैं। क्योंकि जब फाइनेंशियल इंसान के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तो हर चीज अच्छी लगती है। तो जरा बताइए कैसे हमारे लिसनर्स खुश हो सकते हैं आपकी बात सुन के।
1: बिल्कुल जी। अभी देखिए, हम ना एक तीर दो निशाने,
0: अच्छा
1: आप स्किल डेवलप करते हैं, फुली ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, अपने ही घर के कंफर्ट से करते हैं, चाहे लैपटॉप पे चाहे फोन पे। आपको एंड में सर्टिफिकेट भी मिलता है,
0: जी
1: गवर्नमेंट सपोर्टेड एजुकेशन प्रोग्राम्स है, फुली ऑनलाइन है, आसान है, एग्जामिनेशन है ही नहीं, आसान सी असाइनमेंट्स हैं। ऑन
0: जी
1: अदर हैंड, आपको गवर्नमेंट अपने घर के खर्चे चलाने के लिए, क्या पढ़ाई कर रहे हैं सर, घर के खर्चे कैसे चलेंगे, जबकि आप जॉब कर सकते हैं फुल टाइम, आप ऊबर चलाएं, सिंगल मदर है, नो एज
0: बिल्कुल
1: लिमिट, आप
0: सही।
1: एलिजिबल हैं, बट गवर्नमेंट आपको आपके खाते में 50,000 से लेके 1,70,000 डॉलर तक का लोन देती है, बिना गारंटी के,
0: वाह,
1: बिना क्रेडिट चेक के, और 0% पे वो लोन होता है बहुत टाइम तक। तो आप हमें कॉल करें, ऑफिस आएं, एंड जानकारी हासिल, आपको जानकारी ही दे देंगे सारी हम।
0: जी। और 0% पे काफी वक्त तक, और देखिए कोई क्रेडिट चेक नहीं है, क्रेडिट आपका अच्छा है, नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, नॉट टू वरी। और बस एक नंबर घुमाइए, 437-264-3175। और बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है नागपाल जी की और उनकी टीम की। और ऑफिस है बाकायदा, आप ऑफिस में जाइए, उनका स्टाफ वहां पे बैठेगा, आपको गाइड करेगा। कोई भी गिमिक नहीं है, कोई भी एक हिडन पैरामीटर्स नहीं है इसमें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम है। 437-264-3175। जी नागपाल जी,
1: हेलो,
0: 437-264-3175 उनके पास। हम फिर से लौटेंगे बहुत जल्दी। और सारांश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
2: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
3: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है, 1 महीने से काम पर नहीं गई, और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
4: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
3: क्या वो मदद करेंगे?
4: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई, तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
5: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ, सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
4: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
5: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
6: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर। यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है। इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111।
7: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है।
8: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी डोमिनिका में इनरोल करवाएं,
7: उसे डॉक्टर बनाएं। 20 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, नो एमकैट रिक्वायर्ड,
8: 90% पास रेट।
7: कॉल नाउ 416-743-9222,
8: 416-743-9222,
7: और विजिट allsaintsuniversity.org। All Saints University से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकेगा।
0: रेडियो टोरंटो कनाडा, और बड़ा ही खूबसूरत सा गाना आपके लिए लाइनअप किया है। मूवी का नाम है बदलते रिश्ते और मेरी सांसों को जो महका रही है। इस गाने पर जाने से पहले आइए आपको लिए चलते हैं प्यारी सी शायरी की तरफ, और उसके बाद इस गाने की तरफ लिए चलेंगे।

कोई चौदहवीं रात का चांद बनकर तुम्हारे तसव्वुर में आया तो होगा। किसी से तो की होगी तुमने मोहब्बत, किसी को गले से लगाया तो होगा। तुम्हारे ख्यालों की अंगड़ाइयों में मेरी याद के फूल महके तो होंगे। कभी अपनी आंखों के काजल से तुमने मेरा नाम लिखकर मिटाया तो होगा। लबों से मोहब्बत का जादू जगाकर, भरी बज्म में सबसे नजरें बचाकर, निगाहों की राहों से दिल में समाकर, किसी ने तुम्हें भी चुराया तो होगा। निगाहों में शम्माए तमन्ना जलाकर, तकी होगी तुमने भी राहें किसी की। किसी ने तो वादा किया होगा तुमसे, किसी ने तुम्हें भी रुलाया तो होगा। कोई चौदहवीं रात का चांद बनकर तुम्हारे तसव्वुर में आया तो होगा।

0: लेकिन हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, ये आपको बीच में बिल्कुल नहीं लटकाने वाले हैं, ये आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। और अगर दोस्तों आप घर बैठ के अपने घर के कंफर्ट में बैठकर एक बहुत कम वक्त के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए एक ऐसा काम करना चाहते हैं अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, जो आपको अच्छी खासी इनकम दे, वो भी US डॉलर्स में, तो ये टॉक शो आप ही के लिए है। हमारे मेहमान की बातचीत आप ही के लिए है। जाना पहचाना नाम है हमारे शो में, जब भी आते हैं लिसनर्स जुड़ जाते हैं, ग्लूड रहते हैं उनकी बात सुनने के लिए। बात कर रहे हैं जेम्स लूक जी की, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंबर में आपको पहले से ही बता दूं, उनकी बातचीत सुनने के बाद इस नंबर की जरूरत आपको डेफिनेटली पड़ने वाली है। 416-454-2581, आई रिपीट, 416-454-2581। जेम्स जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, प्लेजर हैविंग यू विद अस जेम्स साहब। और जब आप आते हैं ना, तो इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग आमिर, हमारे जितने लिसनर्स हैं वो बड़ी ध्यान से आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि आप जो बताते हैं ना, चाहे वो छोटे से छोटा किसी ने एजुकेशन बैकग्राउंड से कोई आता हो, चाहे बड़े से बड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, किसी वजह से वो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते या काम नहीं कर सकते, या घर के कंफर्ट में ही किसी वजह से काम करना चाहते हैं, औरतें हैं, लेडीज हैं, बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती हैं, तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप उनको एक बहुत अच्छी अर्निंग का मौका देते हैं। तो हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे कुछ इसी हवाले से?
1: मैं आपको बताना चाहूँ कि ये प्रोग्राम जो है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, पहली
0: जी
1: बात, और ये जेन्युइन प्रोग्राम है जो कि स्टॉक एक्सचेंज वालों ने बनाए हुए हैं। जैसे आपने फॉरेक्स का नाम सुना होगा, फॉरेक्स
0: जी
1: है, उसके अलावा ऑप्शंस हैं,
0: जी
1: इसका नाम है फ्यूचर्स। और ये
0: अच्छा
1: फ्यूचर्स इसको इसलिए कहते हैं कि इसके कॉन्ट्रैक्ट सारे फ्यूचर्स में होते हैं।
0: ओके
1: सो इसलिए ये प्रोग्राम जो है ये बड़ा आसान प्रोग्राम है, कोई भी इसको सीख सकता है, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको क्लिक करना आता है तो आप ये प्रोग्राम में दाखिल हो सकते हैं, आप सीख
0: जी
1: सकते हैं यह प्रोग्राम। और मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ क्लिक करें आप और आपको ये प्रोग्राम जो है ये पैसे देगा, और
0: जी
1: ये मेरी गारंटी है कि आप पैसे बनाएंगे। सो इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये जो भी लोग हैं जो पैसा बनाना चाहते हैं, वो सीरियसली बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं लेकिन वो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। अब ये मुझे मालूम नहीं कि क्यों वो फोन करते हैं। उनका ख्याल है कि शायद फ्री में पैसे बनते हैं, ऑलमोस्ट फ्री में बनते हैं, लेकिन
0: जी
1: इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है,
0: होती है
1: और ट्रेनिंग की फीस तो आपको पता देनी पड़ती है। बट दैट्स द ओनली ओनली फी दैट यू हैव टू गिव,
0: जी
1: और कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ती।
0: जी
1: तो इसलिए मैं ये हमेशा रेकमेंड करता हूँ सब लोगों को कि आप आए और मेरे साथ बैठ के पैसे बनाएं। आना
0: जी
1: कहीं नहीं पड़ता, ट्रेनिंग जो है वो जूम पे होती है, ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आज को पता है आपको कि दुनिया बहुत मॉडर्न हो गई है। सो इसलिए यही जो ट्रेनिंग है ये आपको बहुत अच्छे पैसे दे सकती है।
0: जी
1: सो आप इसमें घबराएं नहीं, आप आ जाएं और आप देखें आप अपनी बिजनेसेस बाय करते हैं कितने पैसे लगाते हैं आप।
0: बिल्कुल
1: ये
0: सही,
1: आपकी एक तरह की आपकी बिजनेस है जो आपको बहुत पैसे दे सकती है।
0: जी
1: सो इसलिए मैं ये कहता हूँ, रेकमेंड करता हूँ आपको कि आप आए इसमें और इसको सीखें और पैसे बनाए। मुझे
0: जी
1: फोन करें, बाकी डिटेल्स मैं आपको फोन पे बताऊंगा, क्योंकि वो फोन यहाँ आप बता नहीं सकते कि। सो इस तरह से आप मेरा फोन नंबर उनको फिर से दे दें कि
0: जी
1: जो
0: बिल्कुल
1: लोग इसमें पैसे बनाना चाहते हैं वो मुझे फोन करें।
0: जी
1: अभी कोर्स कोर्स शुरू होने वाला है, बल्कि हो चुका है, आज ही कोर्स शुरू हुआ है।
0: आज ही
1: और
0: कोर्स
1: अगर
0: हुआ
1: वो
0: जी।
1: हाँ अगर वो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो मुझे फोन करें।
0: जी अच्छा।

0: जेम्स साहब, यहाँ एक और चीज मैं चलते चलते ऐड करना चाहूंगी हमारे लिसनर्स को आपके बिहाफ पे। जैसे आप हमेशा बताते हैं कि अगर ज्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल और बहुत अच्छा। एक कहते हैं ना कि जो अगर नॉलेज नहीं भी होती तो कई कई बार वो बहुत एक एक कहना चाहिए बेनिफिशियल साबित होती है, क्योंकि जब आप कोई चीज जीरो से सीखते हैं ना, अब देखिए आपसे वो बिल्कुल शुरू से सीखेंगे तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करेंगे और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो अकम्प्लिशमेंट है, वो उनको जब ट्रांसफर होगी तो उनके लिए बहुत फायदा होगा। एम आई राइट जेम्स जी?
1: एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जो वो कहते हैं जो साफ स्लेट होती है ना, उसपे आप
0: बिल्कुल
1: कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन
0: बिल्कुल
1: जिस
0: सही,
1: स्लेट पे ऑलरेडी लिखा होता है, कुछ ना कुछ उसको भी मिटाना पड़ता है, और
0: मिटाना
1: वो
0: पड़ता है।
1: मिटाने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। क्योंकि
0: क्या बात है, बिल्कुल सही।
1: और यही बात है, आज मुझे एक फोन आया था, एक
0: अच्छा
1: साहब है, बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपने आप को आज जब इंसान को पैदा किया था ना खुदा ने, तो
0: जी,
1: उसको एक बात बड़ी उसके कान में कही थी कि
0: अच्छा
1: तुझसे अक्लमंद और तुझसे खूबसूरत बंदा मैंने पैदा नहीं किया।
0: हाँ
1: तो वो इसमें इसी बात पे कुछ लोग हैं वो इतराते हैं और वो सोचते हैं कि भाई मेरे से काबिल आदमी कोई नहीं है, मैं हर एक को धोखा दे सकता हूँ। लेकिन इसमें धोखा देने की बहुत, हम इंसान हैं, गलतियां हमसे होती हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम सीरियसली पैसे बनाना चाहते हैं ना,
0: जी
1: तो ये मौका है आपको पैसे बनाने का।
0: एब्सोल्युटली, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज द नंबर। सिर्फ 10 नंबर के फासले पर एक शानदार फ्लरिशिंग करियर, बहुत अच्छी आमदनी आपका इंतजार कर रही है। नंबर टू कॉल 416-454-2581, दैट इज 416-454-2581। जेम्स जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
1: जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: प्लेजर, थैंक यू जी। बहुत प्यारा सा गाना आपके लिए। कहते हैं, तेरी सांसों की महक समाई है इस दिल में, बस तू महकते रहना और ये दिल धड़कता रहेगा।

0: 2:33, 2:33 और शिवानी और आमिर के साथ आप हैं रेडियो टोरंटो कनाडा पर। दोस्तों, बहुत खूबसूरत सी दोपहर है और शाम की तरफ धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती ये दोपहर लेकर आई है आपका साथ, और जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ और एंजॉय कर रहे हैं आप खूबसूरत से गाने। और दोस्तों, ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, फिर से मैं एक बार दोहरा रही हूँ ये बात को, कि जब हमारी सेहत अच्छी होती है, हमारे घर में बीमारियां नहीं होती, हमारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ता, और अगर बीमारियां होती भी हैं तो एक ऐसी जगह हम जाते हैं, एक ऐसे सज्जन के पास हम जाते हैं, एक ऐसे जेंटलमैन के पास हम जाते हैं, एक ऐसे गुरुजी के पास हम जाते हैं जो हमें वो ऐसी मेडिकेशंस देते हैं और वो बिल्कुल साइड इफेक्ट्स उसमें नहीं होता, क्योंकि ये हर्बल मेडिकेशंस होती हैं, ये जड़ी बूटियां होती हैं और ये दुनिया भर के उन जगह से लेकर गुरुजी आते हैं जहां हमारा जाना पॉसिबल ही नहीं होता। वहां वो जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, हिमालयाज में जाते हैं, उत्तरकाशी में जाते हैं, नेपाल में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, वहां से ऐसी जड़ी बूटियां लेकर आते हैं जो हमारे अंदर की बीमारी को जड़ से खत्म करती हैं हमेशा हमेशा के लिए। और गुरुजी 4 दिन ब्रैम्पटन में होते हैं, 3 दिन स्कारब्रो में होते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन गुरुजी ब्रैम्पटन में होते हैं, यानी कल संडे तक आपने ब्रैम्पटन में गुरुजी की सेवाओं का, अपनी बीमारियों का निदान किया, और 3 दिन गुरुजी अब आपको स्कारब्रो में मिलेंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। कंसल्टेशन गुरुजी का बिल्कुल फ्री है, क्योंकि गुरुजी ये सारा काम जो है सिर्फ सेवा भावना से करते हैं, मानवता के लिए सेवा, सर्व टू ह्यूमैनिटी। नंबर टू कॉल 4374383399, 4374383399। गुरुजी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते नमस्ते जी, कैसा है जी?
0: बिल्कुल ठीक गुरुजी, अब आप आए हैं तो हम हमेशा अच्छे हो गए हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि हम अंदर से हमारी बीमारियां जो है वो डर के भाग रही हैं आपसे।
1: वही वही जी, आप सच कहता है, आप कभी भी सच कहता है, झूठा कभी भी नहीं बोलता है। मैं एक बात बताऊं जी, माधव सेव ये मानव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा। मानव को हम इंसान को हेल्प करें तो वो हम भगवान को हेल्प करता है,
0: बिल्कुल सही,
1: भगवान को सेवा करता है। हम लोगों को सेवा करता है वो हम भगवान को सोच कर सेवा करता है। हर मनुष्य को अंदर, हर जीव आत्मा के अंदर परमात्मा है, हम कर रहा हूँ परमात्मा के लिए सेवा कर रहा हूँ, वैसा भावना से हम ये सेवा कर रहा है पिछले 9 जनरेशन से।
0: जी,
1: अमीर लोग भी होता है, गरीब लोग भी होता है, पैसा वाला आता है, पैसे नया वाला भी आता है, सारा लोगों को हम ठीक ठीक से एक ही तरफ ट्रीटमेंट करता है
0: जी।
1: वैसा है ये ट्रीटमेंट सारा, आप बताए थे सच्ची है, ये लोगों को नहीं जा सकता है उस उतना फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट को अंदर और डीप हिल्स को अंदर, हिल स्टेशन के अंदर जाके उधर से ये जड़ी बूटियां कलेक्ट करता है। मेरा टीम के साथ जाके कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके उससे हम बनाता है औषध बनाता है। इसलिए क्या होता है, हमारा बीमार सारा में सारा जड़ से निकल जाता है, फिर वापस नहीं आता है। एक रोग शरीर को अंदर हुई है तो जी ये जल्दी नहीं जाता है, उसको जड़ से निकलने के लिए मैं जड़ी बूटियां से इलाज करता है
0: जी।
1: इसलिए क्या होता है, कोई भी बीमार है शरीर में, लाइक जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, लोअर बैक पेन, नी में स्वेलिंग, नी में कॉटलेज, नी को अंदर लिगमेंट ना कम होता है, सूजन होता है, सुन होता है, और सायाटिका पेन, लोअर L2 L3 L4 में बल्जिंग होके नर्व्स में दबाते हैं वो पेन, एंड सर्विकल नर्व्स का पेन, शोल्डर फ्रोजन, शोल्डर को स्वेलिंग, शोल्डर को पेन, सम पीपल्स को शोल्डर ऊपर नीचे वो नहीं होता, वो
0: नहीं
1: जैकेट
0: होता,
1: पेन, यस जैकेट
0: हाथ
1: पहनने में,
0: उठाने में, हाथ उठाने में लोगों को बहुत दर्द होता है,
1: यस शोल्डर वो जैकेट पहनने में दर्द होता है, जिप नहीं कर सकता है, वैसा लोगों को भी हमारा शो सुन के बहुत लोग आ गया जी, सारा लोगों को भगवान आशीर्वाद से ठीक हो गया था। उसके बाद शिवानी जी, हमारा पास वो लोग ज्यादा स्किन डिसीज लोग ज्यादा आ रहा है इधर,
0: गुरुजी
1: किसके
0: मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, मेरे पास भी
1: लिए?
0: बहुत सारे सवाल आए आपसे पूछने के लिए कि आजकल शायद मौसम की वजह से इतनी एलर्जी है, कभी स्किन में बहुत ड्राइनेस है, कभी स्किन में पैचेस आने लगते हैं, कभी स्किन में स्वेलिंग आने लगती है, वही आपके पास भी आते होंगे शायद।
1: यस, क्यों कहो बहन जी, इधर हमारा सूर्य भगवान बहुत नीचे नजदीक है, इधर इंडिया में, इंडिया से इधर बहुत, इसलिए सन बर्न होता है, इसलिए स्किन में सोरियासिस, एक्जिमा, अपना स्किन में रैशेस ज्यादा होता है, वो छोटा
0: जी
1: बच्चों को लिए भी बड़ा तक हो जाता है, किसी को, और हमारा खाना पीना में भी वैसा हो जाता है स्किन के लिए, वैसा
0: जी
1: स्किन लोग बहुत लोग आ रहा है, बहुत लोग ऊपर वाला का आशीर्वाद से ठीक भी हो रहा है, और
0: क्या
1: किडनी
0: बात।
1: को अंदर स्टोन भी भगवान आशीर्वाद से ठीक हो रहा है, और वो सिर में बाल जड़ जाता है, बाल को हेयर फॉलिंग के लिए, हेयर ग्रोथिंग के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा इलाज होता है,
0: जी
1: और मेमोरी के लिए, बहुत लोगों को मेमोरी बहुत कम होता है, भूल
0: जी
1: जाता है हमारा भी,
0: बिल्कुल
1: हमको नहीं मतलब एक चीज उधर रखता है, एक घंटे के बाद किधर किधर रखता है, हम ढूंढता है, वही थोड़ा
0: बिल्कुल
1: शॉर्ट मेमोरी होता है, वो भी उसको लिए भी वो हम नेग्लेक्ट नहीं करना, ये छोटा है, कल कल बड़ा प्रॉब्लम होने के लिए रास्ता रहता है,
0: सही, ये
1: वैसा
0: छोटे
1: लोग,
0: प्रॉब्लम को इग्नोर करने पे ही वो बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है ना, इसी
1: यस यस, छोटा छोटा में हम देखे तो वो छोटा से जाता है, नहीं तो
0: सही
1: ये ज्यादा प्रॉब्लम, ये मेमोरी लॉस तब तक जाता है,
0: जी
1: और वो शेवरिंग होता है बॉडी में, क्या होता है वो बहुत बहुत वो शेवरिंग हो जाता है हाथ में एंड पैरों में, बॉडी में शेवरिंग हो जाता है, उसको लिए भी हमारा पास इलाज होता है, और
0: जी
1: पैरालिसिस के लिए, वैसा बहुत लोग हमारा शो सुन के, और एक लोग आके, और बहुत लोग हमारे पास आके ठीक हो गया था ऊपर वाला के
0: जी
1: आशीर्वाद से, वैसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना, प्रॉब्लम हुई थे हमारे पास आ जाइए, बिल्कुल भगवान आशीर्वाद से ठीक होने का चांस है।
0: क्या बात है। बस नंबर एक नोट कीजिए गुरुजी, इसी 10 नंबर पे आपसे मिलेंगे। ये हॉट नंबर है, ये हॉटलाइन का नंबर है, ये दुख को दूर करने का नंबर है और परेशानियों से निजात पाने का नंबर है। 4374383399 आसान सा नंबर है, अब गुरुजी का नंबर सबको याद हो गया होगा। 4374383399। गुरुजी बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
1: थैंक यू जी, थैंक यू जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: क्या आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं पर टूल्स समझ नहीं आते? इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो एनरोल कीजिए रेडियो टोरंटो कनाडा के डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स में। सिर्फ 4 हफ्ते में बनिए डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट, रील्स, सब कुछ सिर्फ 4 वीक्स में।
3: बी अ क्रिएटर ऑफ योर ओन कॉन्टेंट। बिगिनर से प्रोफेशनल डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बनने के सफर में आपका हम सफर। रेडियो टोरंटो कनाडा, बनिए टोरंटो की डिजिटल आवाज। RTC के डिजिटल मीडिया कोर्स के साथ कॉल 416-303-3639, 416-303-3639।
0: टीम गुरजोत रंधावा आपके लिए लेकर आए हैं इस समर का ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, कैसलमोर एस्टेट इन द हॉटेस्ट एरिया ऑफ कैसलमोर ब्रैम्पटन। लग्जरी एस्टेट होम्स फ्रॉम 3,000 टू 7,000 स्क्वायर फीट विद लॉट्स ऑफ फीचर्स, 2 to 4 कार गराज, 10 to 11 feet सीलिंग, क्वार्ट्ज काउंटरटॉप, ऑल बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम्स, स्पाइस किचन ऑन द मेन फ्लोर एंड अप टू 7 bedroom 8 वॉशरूम ऑप्शंस अवेलेबल फॉर बिगर यूनिट्स। Late 2027 closing, easy deposit structure. Don't miss this opportunity. Call Gurjot Randhawa 416-576-0595, 416-576-0595. Castlemore Estates in the Castlemore, Brampton.
4: एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
5: कल किसने देखा है जी, लाइफ कभी भी बदल सकती है, इसलिए आज प्लानिंग कीजिए ताकि कल आप टेंशन फ्री रहें। जॉब लॉस, डिसेबिलिटी या फिर लाइफ की कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, शबाना की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान इज द सॉल्यूशन। लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, RESP, RDSP, सब कुछ एक ही जगह। शबाना
6: अवार्ड विनिंग इंश्योरेंस प्रोफेशनल, शबाना के लंबे एक्सपीरियंस से अब होगी आपकी फैमिली की कंप्लीट केयर, क्योंकि शबाना इज ऑलवेज देयर। 647-997-7 7224 6479977224।
7: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर। यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है। इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111।
8: और साहब बात करेंगे आपको मिलने वाले उस फायदे की कि जिसके लिए एक लम्हे की भी देर मुनासिब नहीं है। याद रखिए, इस मुल्क में रूल्स इतनी तेजी से बदलते हैं कि आप थोड़ी सी देर भी कर दें तो अपॉर्चुनिटी ये रेत की तरह आपकी मुट्ठी में से निकल जाती है। इसलिए अभी एक्ट करना है, एक्शन लेना है और गवर्नमेंट की तरफ से आपको 1.5 से 2 लाख का लोन मिल सकता है, पॉसिबल है, लोगों ने लिया है और लोग उस लोन से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, साथ में स्किल भी बना रहे हैं। ये कैसे मुमकिन होगा जानेंगे नागपाल जी से। वेलकम करते हैं नागपाल आपको।
9: थैंक यू भाई, सभी को सलाम,
8: शुक्रिया बहुत बहुत। नागपाल, मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हर कोई ये लोन अप्लाई कर सकता है, और दूसरा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ ये है कि ये लोन कितनी देर में वापस करना होता है और कितना सूद या ब्याज होता है इस पे?
9: हाँ जी, तो जिनका स्टेटस कनाडा में पीआर या सिटीजन या प्रोटेक्टेड पर्सन है, ओंटारियो में रहते हैं, वो कहीं भी रहते हैं ओंटारियो में, वो तालीम हासिल करते हैं, स्किल हासिल करते हैं, पूरी ऑनलाइन आसान से कोर्सेज करते हैं, हुकूमत उनको उनके खाते में लोन देती है जो कि रेंज करता है 50,000 से 1.5 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज, बच्चे ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है तो गवर्नमेंट आपको आपके खाते में ज्यादा पैसा देती है। तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं, नो क्रेडिट चेक, नो एज लिमिट, तालीम हासिल करें, फंडिंग हासिल करें।
8: बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग जरा डर से जाते हैं, सहम जाते हैं, हजार तरह के डाउट्स उनके जहन में होते हैं, तो मुझे पता चला है आपने बहुत से लोगों को ये लोन ऑलरेडी दिलाया है, जरा बताइए इस बारे में हमें।
9: 8 साल से हम हजारों लोगों को असिस्ट कर चुके हैं। वही लोग जो आप इन लोगों की बात कर रहे हैं, जब मोर्टगेज कराने जाते हैं नकली कागज से, जब लोन लेते हैं तब तो उन्हें डर लगता नहीं है, तो आपको लगता है हमारा तो साफ काम है, साफ तरीके से 8 साल से कर रहे हैं, आपके असली कागज लगते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट से आप लोन ले रहे हैं सर, बैंक से तो ले नहीं रहे, तो पागल तो बुला नहीं सकते गवर्नमेंट को, कागज नकली तो ले नहीं सकते गवर्नमेंट, कागज नहीं लगते बताओ, एम्प्लॉयमेंट का कागज नहीं लगता, कोई पेपर का थप्पा नहीं लगता, क्या लगता है आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि फैमिली ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, तो फंडिंग ज्यादा है, मतलब सही काम सही तरीके से कर रहे हैं, बहुतों को असेस कर चुके हैं।
8: सवाल ये पूछना चाहता हूँ नागपाल के, बहुत सी लेडीज हैं घरों में बैठी हैं, 19-20 साल का बच्चा है घर में बैठा है, या 60-65 साल का कोई बुजुर्ग है घर में, 2-2, 3-3, 4-4 बुजुर्ग वहां बैठे हैं, सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं?
9: बिल्कुल जी, कोई एज लिमिट नहीं है, कनाडा में चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एज पे या फिर जेंडर पे किसी भी चीज पे, इतने हाउस वाइफ है जो तालीम हासिल कर रहे हैं, फंडिंग हासिल कर चुके हैं, इतने ऊबर ड्राइवर है, फुल टाइम जॉब करने वाले भी हैं, तो आप इसे मिस ना करें, आप पीछे ना रहें, आपके आस पड़ोस वाले सारे इस लोन को हासिल कर चुके हैं, क्यों? क्योंकि ये लोन आप मान के चले अगर फैमिली ऑफ 4 है तो 1.5 लाख का लोन हो गया, 0% पे है, वापस सब करना स्टार्ट करना है 2.5 साल बाद, अब 1.5 लाख का जो ब्याज है 2.5 साल बाद आप 15 साल वापस करते हैं, 15 साल वापस करते हैं और फिर भी ब्याज दर है 0%, पेमेंट कब से स्टार्ट है 2.5 साल बाद, तब ब्याज दर कितना है 2.5% पूरे साल का, मतलब $1,00,000 पे आप सिर्फ $2,500 ब्याज दे रहे हैं पूरे साल का, 15 साल की किस्त में आप देख सकते हैं, उसको कहाँ मिलेगा बताओ, कहाँ मिलेगा, धरती पे नहीं मिलेगा, कनाडा तो छोटी चीज है।
8: बिल्कुल ठीक। यहाँ जरा सा एक कंपैरिजन करना चाहते हैं कि आजकल जो प्राइवेट लोन मिलता है या बैंक से जो लोन मिलता है उसकी क्या परसेंटेज होती है इंटरेस्ट के हवाले से?
9: देखिए जी, पहले तो वो नकली कागज पे मिलता है, असली कागज पे तो कोई देता नहीं, मुझे भी देते असली कागज पे। मैंने लोन मांग के गया था बैंक से, कहते दो साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, होना चाहिए, बोनस चाहिए। कोई बंदों को जब मोर्गेज वाले पे जाऊंगा राइट अवे लोन दे देंगे, तो मतलब नकली कागज का तारा हो तो भूल ही जाओ। दूसरा ऊपर से वो देंगे 10 से 12 से 20% पे। तीसरा वो देंगे 10 से 20,000 डॉलर, यहाँ पे हम 1.5 लाख की बातें करते हैं। इसलिए सही काम सही तरीके से हासिल करें, एक तीर दो निशाने, आपने स्किल डेवलप करी, आपने आसान से कोर्स करा, खुली ऑनलाइन कोर्स है, कहीं नहीं जा रहे आप, बिजनेस मैनेजमेंट करा, एग्जाम नहीं है, आसान से असाइनमेंट है, हमारे ऑफिस आइए, प्रॉपर ऑफिस है, कोई चलाकी कोई मीठी बातें नहीं है। ठा करके कहता हूँ, बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं और एटीट्यूड जीरो कंप्लेंट, बहुतों का लोग हमें मिठाई के डब्बे देके जाते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसलिए
8: ये तो खैर मैंने खुद देखा है, मुझे मौका मिला, मैं आपके वहां ऑफिस आया था, बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, जेन्युइन है, ओरिजिनल है, नो फ्रैक्शन ऑफ अ डाउट, किसी तरह का शक शुबा या किसी परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। नागपाल जी से डायरेक्ट बात करनी, आप जहां भी हमें सुन रहे हैं, मार्कम है, एजेक्स है, पिकरिंग है, स्कारब्रो है, किंगस्टन तक चले जाएं, आप जहां जहां आप हमें सुन रहे हैं ये आपके लिए है, बहुत बड़ी सहूलत है इस गए गुजरे दौर में, रिसेशन के दौर में। अगर आपको जीरो इंटरेस्ट पे जितना पैसा लेना है उतना ही वापस करना है, 1.5-2 लाख मिल जाता है, इट्स अ बिग बिग विन फॉर यू। यहां नंबर दे रहा हूं मैं नागपाल जी का, ये मिलाएंगे 437-264-3175, नंबर दोबारा बता रहे हैं 437-264-3175। सवाल ये पूछना चाहता हूं नागपाल जी, आपकी अपनी भी कोई फीस होती है इसमें 200, 400, 100, और वो अगर होती है तो कब देनी होती है आपको?
9: देखिए जी, हमें लौटे बंदे जो फीस अपनी एयर पे बताते हैं रेडियो पे 199 के बाद, तो ईमानदारी किसकी चेक हो रही है? आपकी, मेरी नहीं हो रही। और बाकी हमारा प्रॉपर ऑफिस है, टिम हॉर्टन में मिलते नहीं है, 1,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, 7 बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं। मतलब अब फीस कुछ लोग कैसे कर रहे हैं, भाई साहब कोई कागज नहीं बन रखी, कोई सेटिंग नहीं, कोई अप्रोच नहीं है, साफ काम है, साफ तरीके से कर रहे हैं। लोग आते कहते सर पहले वाले ने 20% लिया, 30% लिया, हमें आपके टोपे एयर पे सुनते हैं, नेक्स्ट कोर्स के लिए राइट से रिटेन हो जाते हैं, है ना। इसलिए आप कॉल करें ऑफिस 234-3175, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हमारा ऑफिस है, हर एंटर डेयरी में आगा पे। नंबर अगेन नोट करें 437-264-3175,
8: यहाँ नंबर है 437-264-3175, 437-264-3175। बहुत शुक्रिया नागपाल आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
6: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना, या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर, रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555, 905-731-2555, रूहानी कॉलेज।

255। और इसी के साथ बहुत जल्द आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है, कल तक के वादे के साथ। लेकिन उससे पहले जरूर बता दें दोस्तों, बाहर गर्मी का मौसम है, इसमें सन टैन की प्रॉब्लम, स्किन की एलर्जीज और स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए अपने चेहरे को, अपने हाथ को, जो भी आपका चेहरे का हिस्सा एक्सपोज रहता है, उसको जरूर ख्याल रखें। होम रेमेडीज हमेशा काम आती हैं, जिसमें एक कुछ चीजें हैं जो हमारे घर का किचन जो है ना, वो सबसे अच्छी हमारी फार्मेसी होता है। उसमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, अपने हाथों पर लगाते हैं, तो आपका जो चेहरा और हाथ है वो सन टैन से बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा सैंडलवुड, जिसको हम चंदन कहते हैं, वो लीजिए और उसका थोड़ा सा पतला सा पेस्ट बनाइए, थोड़ा एलोवेरा जेल उसमें लगाइए और अपने चेहरे पर आप लगा सकते हैं। और 15-20 मिनट्स के बाद उसको वॉश ऑफ कीजिए। कुछ दिनों तक लगाएंगे, आपको सन टैन से बिल्कुल छुटकारा मिलेगा। और एक और प्रूवन जो रेमेडी है वो ये है कि थोड़ा सा बेसन लीजिए, जिसको हम चिक पीस फ्लावर कहते हैं, उसमें थोड़ा योगर्ट और थोड़ा सा टर्मरिक यानी हल्दी मिलाइए। हल्दी, बेसन और दही, ये तीनों को मिलाकर अपने चेहरे पर लगाइए और जल्दी ही आप अगर इसका रेगुलर यूज करेंगे तो बड़ी जल्दी आपको सन टैन से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन सन की जो वैल्यू है वो जो है समर में सबसे ज्यादा उठानी भी चाहिए, सनशाइन में जाना चाहिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करके वाटर बॉटल साथ में रखिए, कैप साथ में रखिए, सनस्क्रीन लगाइए, सनग्लासेस लगाइए और अपने आप को प्रोटेक्ट करके आप आराम से समर को एंजॉय कीजिए, बचे हुए दिनों के समर के। और सुनते रेडियो टोरंटो कनाडा। अब मैं शिवानी लेती हूँ आपसे इजाजत अपने को होस्ट आमिर के साथ, 416-303-3639। नमस्कार।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention, please. Sean Express, Masti Ki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jal mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, Masti Ki Rail Gari. Aayi Sean Express, Masti Ki Rail Gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी,
5: ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. मैं शालिनी आप लोगों का वेलकम करती हूं इस मंडे मैजिक में, और आप लोगों को मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट. आज भी बहुत सारा लाइव म्यूजिक आपके लिए किया है प्लान हम लोगों ने यहाँ पर, और एक खूबसूरत सा मंडे लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं. और आज के शो के बारे में कहते हैं कि नया हफ्ता दस्तक दे चुका है और मंडे कहता है चलो फिर से कुछ नया शुरू करते हैं. हर नया हफ्ता 7 नए मौके लेकर आता है, इसीलिए शुरुआत उम्मीद से कीजिए, मेहनत भरोसे से कीजिए और नतीजे वक्त पर छोड़ दीजिए. और दोस्तों, हौसलों को थोड़ा और ऊंचा कर लीजिए, सपनों से आज फिर एक वादा कर लीजिए. मंजिलें मिलेंगी, रास्ते भी बनेंगे, बस पहला कदम मुस्कुराकर बढ़ा लीजिए. और दोस्तों, चलिए आज के शो की भी शुरुआत करें ताज़ा खबरों के साथ. उसके बाद बॉलीवुड के पन्ने खुलेंगे, बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारा लाइव म्यूजिक होगा, आपसे हमारी बातचीत भी होगी. डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812. गुड आफ्टरनून. Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media. प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि अगर ओंटारियो में नए डेटा सेंटर्स नहीं बनाए गए तो कैनेडियंस का डेटा यूएस में जा सकता है और उनके शब्दों में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हाथों तक पहुंच सकता है. फोर्ड का बयान ऐसे वक्त आया है जब ओकविल ने नए डेटा सेंटर्स पर 1 ईयर मेमोरेटोरियम लगा दिया है. वहीं पर मिसिसागा सिटी काउंसिल भी अगले महीने इसी तरह के मोरेटोरियम पर विचार करने वाली है. फोर्ड का कहना है कि ओंटारियो को अपनी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की जरूरत है ताकि कनेडियन डेटा को कनाडा में ही रखा जा सके. उधर कनाडा यूएस ट्रेड नेगोसिएशन अब बेहद इंपॉर्टेंट स्टेज पर पहुंच चुके हैं. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ से लागू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं. ट्रंप ने सीमेंट से लेकर हॉकी स्टिक्स तक कई कनेडियन गुड्स पर 50% टैरिफ्स लगाने की धमकी दी है. ये टैरिफ्स 19 अगस्त से लागू होने हैं, लेकिन उससे पहले नेगोशिएटर्स किसी अग्रीमेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिरी वक्त में कोई ट्रेड डील या ब्रेक थ्रू होता है या कनेडियन एक्सपोर्टर्स को नई 50% टैरिफ्स का सामना करना पड़ सकता है. ओंटारियो में एक मिसिंग प्लेन की सर्च के दौरान क्रूज को क्वीन एलिजाबेथ 2 प्रोविंशियल पार्क के पास एयरक्राफ्ट का डेब्री मिला है, लेकिन प्लेन उड़ा रहे 73 साल के डेविड डगलस का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है. फैमिली के मुताबिक डगलस ने फ्राइडे सुबह 8:30 पर ओशवा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था और क्वार्टा लेक्स की तरफ जा रहे थे. पायलट की तलाश जारी है. ब्रैम्पटन में एक एलिमेंट्री स्कूल के पास अप्रैल में हुई डेडली शूटिंग के मामले में 5 सस्पेक्ट्स को चार्ज किया गया है, जिसमें 2 साल के टीनेजर्स भी शामिल हैं। शूटिंग रदरफोर्ड और कैनेडी रोड्स के एरिया में हुई थी। पुलिस के मुताबिक एक आदमी जो 20 साल की उम्र का था, इनको मल्टीपल गन शॉट वूंड्स के साथ पाया गया था। एक मेल यूथ भी नियर बाय वेब्रिज ट्रेल के पास गन शॉट वूंड के साथ मिला था। इन्वेस्टिगेशन जारी है। टोरंटो में इस हफ्ते ओवरऑल वार्म और संडे का जैसा सनी वेदर रहने वाला है। आज मंडे को ब्रीजी कंडीशंस के साथ हाई 27 रहेगा। कल रात से थंडर स्टॉर्म्स डेवलप हो सकते हैं और वेंसडे मॉर्निंग तक शावर्स जारी रहने की संभावना है। ट्यूसडे का हाई 28 जबकि वेंसडे करीबन 25 डिग्री रहेगा। थर्सडे और फ्राइडे मेनली सनी रहेंगे, दोनों दिन हाई करीबन 26 डिग्री। सैटरडे की शुरुआत सनशाइन के साथ होगी लेकिन आफ्टरनून या इवनिंग में शावर्स आ सकते हैं। संडे भी रेन की पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा कूल टेम्परेचर रहेगा और हाई ऑफ 23 डिग्री सेंटीग्रेड। आज की खबरों में इतना ही। सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी 4 बजे तक सीएमआर एफएम 101.3 पर। गुड आफ्टरनून,
2: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, विन लाइफ टाइम यानी जीतो जिंदगी भर, और हमारे साथ रिनाउन ट्रेडर एंड ट्रेनर जुड़ चुके हैं राफी जी, नए हफ्ते की नई एनर्जी के साथ। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: गुड गुड, वेरी वेल। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: बहुत बहुत शुक्रिया राफी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कैसा रहा वीकेंड का सेमिनार, कितने लोगों ने सही फैसला लिया अपनी जिंदगियों को लेकर?
2: जी, दोनों ऑफिसेज में डिफरेंट स्टूडेंट्स आए थे, सम गॉट टू लर्न एंड वी टॉट अ लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स, सो बेहतरीन रहा।
1: क्या बात है, अमेजिंग। तो राफी जी, जो नए लिसनर्स हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, उन्हें मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताएं विन लाइफ टाइम के बारे में, किस तरह से शुरुआत हुई और कैसे विन लाइफ टाइम हमारी जिंदगी में हमारी मदद कर सकता है टू गेट अ बेटर लाइफ स्टाइल एंड बेटर लाइवलीहुड।
2: जी एब्सोल्युटली, 18 साल से हम आपको एक ऑनलाइन बिजनेस सिखाते आए हैं कि हाउ घर बैठ के इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से बगैर कहीं जॉब पे गए सिर्फ कपल ऑफ आवर्स में कपल ऑफ $100 बनाना बहुत आसान है। इफ यू आर सिंगल मदर, इफ यू आर न्यू इमिग्रेंट, इफ यू आर ओल्ड एज, इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन इनकम, इससे अच्छा कोई बिजनेस है नहीं है मार्केट में।
1: जी जी, क्या बात है। तो राफी जी, इस बिजनेस में कितना वक्त और कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा शुरुआत में?
2: इन्वेस्टमेंट पैसे की नहीं है, वक्त की है, क्योंकि आजकल ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो आपके लिए रिस्क लेती हैं, वो सारा कैपिटल आपको प्रोवाइड करते हैं, तो हम आपको उनके साथ पेयर कर देते हैं। आपके 2 वीकेंड के कोर्सेज हैं, आप आएं सीख लें। मंडे टू फ्राइडे हमारा स्टाफ आपको सिखाता रहता है, सो यू आर नॉट ट्रेडिंग अलोन।
1: अच्छा, दैट्स अमेजिंग। तो क्या रहेगा पहला स्टेप राफी जी, कैसे की जाए शुरुआत?
2: सबसे पहले सैटरडे 1 PM सेमिनार पे आए। 5 मिनट के इंटरव्यू में तो मैं आपके रिजल्ट्स नहीं दिखा सकता, लेकिन 5 आवर्स में आपको सारा, अगर नहीं आ सकते तो मंडे टू फ्राइडे हमारे ऑफिस में आ जाएं, लाइव हमारे पुराने सेशन सुन लें, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है जी।
1: क्या बात है, वंडरफुल। सो वेल दोस्तों, 9052061008, दैट्स 9052061008, या विजिट करें winlifetime.com। थैंक यू सो मच राफी जी हमसे जुड़ने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।
2: थैंक यू जी, टेक केयर।
1: जी, यू मोस्ट वेलकम। हरवेल दोस्तों, आपने गिटार की आवाज पीछे से सुन ली होगी, हमारे साथ पहुंच चुके हैं रिनाउन म्यूजिक कंपोजर फरुख जी इन स्टूडियो। और फरुख जी, ग्रेट टू सी यू, यू कम एज अ सनशाइन एवरी मंडे।
3: हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, आप कैसे हो?
3: और क्या हो रहा है?
1: बस बहुत अच्छा चल रहा है फरुख जी, कैसा रहा आपका वीकेंड?
3: वीकेंड बस रिकॉर्डिंग्स चल रही थी, स्टार्टिंग अ न्यू शो मैजिक नोट्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो।
1: अरे वाह,
3: यहाँ पे यू नो फॉर यंगस्टर्स, जो नए लोग हैं उनके लिए कोक स्टूडियो टाइप अपना एक सेशन शुरू कर रहे हैं यहाँ।
1: अमेजिंग, वाओ, ठीक है, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो दोस्तों आपको बता दें, फरुख जी जो हैं बड़े महसूस करके गिटार बजाते हैं, सिर्फ गिटार जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग नहीं बजाते, पूरी तरह से म्यूजिक में उतर जाते हैं। और पाकिस्तान के बड़े मशहूर टेलीविजन शोज के लिए भी बहुत सारे म्यूजिक कंपोज किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं इन्होंने, पूरी टीम है फरुख जी की। और इनके बहुत ही रिनाउंड नाम है, बहुत ही टैलेंटेड हैं, और जो पूरी टीम है वो ऑडियो वीडियो दोनों प्रोडक्शन करती है। तो आज हम एक बार फिर से फारूक जी का इन स्टूडियो वेलकम करेंगे, कुछ गाएंगे, कुछ बजाएंगे और आपको एंटरटेन करेंगे। और एक खूबसूरत से गाने की रिक्वेस्ट आई है फारूक जी, तो वो गाना हम प्ले करते हैं और उसके बाद हम जो है अपना लाइव म्यूजिक शुरू करेंगे आज के शो का और अपने लिसनर्स को एंटरटेन करेंगे। डायरेक्ट नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों फारूक जी का, 416-560-1605, 416-560-1605। जुड़े रहिए।
3: कोई भी रिकॉर्डिंग करना चाहता है, गाने रिकॉर्ड करना चाहता है, कमर्शियल्स, एड्स, जिंदगी, दे कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर।
1: दैट इज वंडरफुल, 416-560-1605। जुड़े रहिए मस्ती की रेलगाड़ी के साथ। गुड आफ्टरनून।
4: Jamming as much variety into your workday as possible. Radio Resync complete. Hit music. Hit after hot hit.
1: Yeah. ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स। दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनके एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक। स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग। स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ। और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600। दैट्स 416-732-3600।

0: रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s। मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज। ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू अर्ली 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844.
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest fee installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
6: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर. यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है. इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है. चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है. आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111.
7: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
8: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
7: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
8: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन.
7: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल.
9: Great investment opportunities available. Oshawa mein 4 bedrooms and 4 washrooms ka town home. Brampton mein Chinguzi aur Wanless ke paas 3 bedrooms ka semi-detached home with 1 bedroom ki basement apartment with separate entrance. And dusra ghar 5 bedrooms ka detached home with 3 bedrooms ki legal basement with separate entrance. All the properties are rented. For more information, call 647-309-5100. 647-309-5100.
10: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.

0: बात है,
1: ब्यूटिफुली प्लेड फारूक जी। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद तुरंत वापस लौटते हैं। दोस्तों आप सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी, और ये जो सेगमेंट है अगला आने वाला वो आप तक पहुंचाया जा रहा है देओल ट्रैवल के सौजन्य से। लेटेस्ट डील्स आ चुकी हैं टोरंटो से मुंबई राउंड ट्रिप सितंबर टू अक्टूबर एंड नवंबर 1390 में दो बैग्स के साथ, और फिर टोरंटो से दिल्ली फरवरी से मार्च तक राउंड ट्रिप लगा हुआ है 1520 में विद टू बैग्स, फिर दिल्ली से टोरंटो मिड सितंबर से अक्टूबर तक वन वे आप जा सकते हैं 900 में दो बैग्स के साथ, फिर दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर से फरवरी मार्च तक राउंड ट्रिप 1390 एंड टोरंटो से दिल्ली राउंड ट्रिप लगा है अक्टूबर टू नवंबर 1490 में टू बैग्स, लिमिटेड सीट्स हैं। सो वेल टू लोकेशंस टू सर्व यू, ब्रैम्पटन एंड इटोबिको। देओल ट्रैवल 905-588-5100 and 905-588-4200, 588-5100 and 588-4200. Renowned music composer Farooq ji hamare saath hai in studio with his amazing guitar, aur unki guitar ki lay pe kuch na kuch attempt zarur karenge ek chote se tiny se break ke baad. Stay tuned on Masti Ki Railgaadi. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.
2: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
3: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
2: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
4: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
5: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
6: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦਿ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
7: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
8: Great investment opportunities available. Oshawa mein 4 bedrooms and 4 washrooms ka town home. Brampton mein Chinguzi aur Wanless ke paas 3 bedrooms ka semi-detached home with 1 bedroom ki basement apartment with separate entrance. And dusra ghar 5 bedrooms ka detached home with 3 bedrooms ki legal basement with separate entrance. All the properties are rented. For more information, call 647-309-5100. 647-309-5100.
9: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।

ब्यूटिफुल फारूक जी, दैट्स अमेजिंग. और बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर ड्राइव चल रही है मस्ती की रेलगाड़ी पर. डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812. 416-569-7812. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू.

0: में कितना सुकून रही है।
1: बहुत ही सुकून है फरुख जी, और इतना खूबसूरत सा यहाँ पर जो है चल रहा है मस्ती की रेलगाड़ी का सफर ऑन CMR FM 101.3। आप हैं मेरे यानी शालिनी के साथ यहाँ पर, और एक अपडेट मैं आपको दे दूं, यहाँ पर मैसेज आ रहा है सहज आयुर्वेदिक हर्बल कॉन्सेंट्रेशन सेंटर की तरफ से, और इनके खानदान में नब्ज देखकर सभी बीमारियों का इलाज आपको मिलता है जड़ी बूटियों के द्वारा, और इनको जो है बड़ी तेजी से लोगों को इलाज का फायदा भी होता है, बहुत फायदा होता है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, किसी भी तरह का बॉडी पेन है, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम्स, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट जो लॉस है, और इसके साथ सोराइसिस और सारी बीमारियों का इलाज है। वैद्य रत्न पीवी राज जी का नंबर आप नोट कर लें, ब्रैम्पटन एंड स्कार्बरो से सर्व करते हैं 6473278111, 6473278111। मस्ती की रेलगाड़ी पर आप हैं शालिन के साथ और फरुख जी का साथ है ऑन हिज गिटार।

और मस्ती की रेलगाड़ी पर ऐसे ही म्यूजिकल सफर जारी रहेगा। छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों। वील बी राइट बैक फॉर मोर ओनली फॉर यू मस्ती की रेलगाड़ी पर। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम,
1: अनदर डॉन क्लीन विद द डॉन डक्स।
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
5: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
4: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड।
5: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232-890-3232।
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
8: Yeah.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
3: ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स. दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो. खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है. नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक. स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग. स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ. और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है. अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स. 416-732-3600. दैट्स 416-732-3600.

और हैं दोस्तों आप मस्ती की रेलगाड़ी पर, और हमारे साथ हैं फरूक जी, रेनाउंड म्यूजिक कंपोजर, और डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812 एंड दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय देओल ट्रैवल. फिर से बता दें, राउंड ट्रिप लगा है टोरंटो से बॉम्बे सितंबर टू अक्टूबर एंड नवंबर 1390 में दो बैग्स के साथ. फिर टोरंटो से दिल्ली जा सकते हैं फरवरी टू मार्च राउंड ट्रिप 1520 टू बैग्स के साथ. नाउ दिल्ली से टोरंटो मिड सितंबर टू अक्टूबर वन वे लगा है 900 में दो बैग्स के साथ. दिल्ली से टोरंटो ही अक्टूबर टू फरवरी एंड मार्च राउंड ट्रिप है 1390 में. नाउ टोरंटो से दिल्ली अक्टूबर से नवंबर तक राउंड ट्रिप 1490 विद टू बैग्स, लिमिटेड सीट्स है. टू लोकेशंस ब्रैम्पटन एंड एटोबिको 905-588-5100 एंड 905-588-4200. मस्ती की रेलगाड़ी पर आप लोगों का फिर से है स्वागत.

0: अच्छा सुर इसके हैं,
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली प्लेड फरुख जी. फरुख आविद जी है हमारे साथ इन स्टूडियो, और उनका नंबर भी नोट कर लें दोस्तों. कोई भी ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन कराना है स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो इन द हार्ट ऑफ मिसेस आगा, 416-560-1605. एक टाइनी सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं वापस कुछ और खूबसूरत से गानों के साथ. मस्ती की रेलगाड़ी पर स्टे ट्यून्ड. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812. हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700, सेमीज फ्रॉम मिड 800 एंड डिटैच होम्स फ्रॉम मिड 900. मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज. ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844. अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर. यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है. इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है. चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है. आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 647-327-8111, 647-327-8111. कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कैनेडा वाइड. घर या बिजनेस के लिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स अगर आपको चाहिए तो आज ही कांटेक्ट कीजिए. ब्रैम्पटन का बड़ा ट्रस्टेड नाम है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी. फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड. टॉप क्वालिटी मटीरियल्स, स्टाइलिश मॉडर्न डिजाइंस, कंपेटिटिव प्राइसिंग. चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, हर सॉल्यूशन मिलता है बड़े प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ. 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन. कॉल कीजिए 416-831-4790, 416-831-4790.
2: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ. ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ.
3: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ.
4: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263. ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ.
5: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
1: वेलकम बैक टू मस्ती की रेलगाड़ी. हम हैं शालिनी के साथ और मेरे साथ है गिटार पर फरुख जी. और मंडे म्यूजिक, मंडे मस्ती आप लोगों का एक बार फिर से करती है वेलकम.

0: बस मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करना चाहता है, ऑडियो वीडियो जिंगल्स कमर्शियल एड, उस दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 416-560-1605 इन अ प्रोफेशनल मैनर, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों इसी के साथ बस आज का आखिरी पीस आप तक पहुंचाने जा रहे हैं आपकी बहुत डिमांड पर, और इस गाने के साथ ही आपको अलविदा भी कहते हैं। शो के बाद हमारा डायरेक्ट नंबर फॉर ऑल योर एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज 416-569-7812। मिलते हैं कल फिर से मस्ती की रेलगाड़ी के साथ।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The views, opinions, and information shared during this program by our hosts, guests, and callers are intended for general information and entertainment purposes only. While we strive to ensure your content is accurate and up-to-date, listeners should seek independent professional advice before making any financial, legal, medical, or other important decisions. This is Jam 101.3. Thank you for listening.
3: ये है जैम ऑन द सीएमआर 101.3 जतिन और अमिताभ के साथ हो जाइए टेंशन फ्री फ्री फ्री फ्री फ्री
2: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों यू आर ट्यून टू जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ जरा सुनिए तो मंडे शुरू हो चुका है एक ब्रांड न्यू हफ्ता हमारे साथ है तो क्यों ना शुरुआत भी एक ऐसी कनेडियन खबर से करें जो थोड़ा सा वाव कहने पर मजबूर कर दे हमें और मुझे लगता है आज की अच्छी खबर के बाद कनाडा में लोग एक नए ओलंपिक स्पोर्ट को गूगल जरूर करने वाले हैं क्यों जतिन जी आपका क्या ख्याल है
4: बिल्कुल ठीक फरमाया आपने अमिताभ जी स्कूल या पार्क में खेले जाने वाला स्पोर्ट फ्लैग फुटबॉल अब ओलंपिक्स में जा रहा है और हमारा कनाडा जा रहा है एज वर्ल्ड चैंपियन जी हाँ कनाडा की वीमेन्स टीम ने जर्मनी में यूएस को 27-20 से हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली और पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी और डबल गुड न्यूज कनाडा की मेन्स टीम ने भी मेक्सिको को ओवरटाइम में 34-26 से हराकर एलए 2028 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया यानी जब फ्लैग फुटबॉल 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में पहला कदम रखेगा तो कनाडा की वीमेन और मैन दोनों टीमें वहां पर होगी
2: वाह जी वाह जतिन जी वर्ल्ड चैंपियंस भी और महिलाओं और पुरुषों की टीम्स ओलंपिक में भी मतलब मेडल की चांसेस हैं हमारी काफी ब्राइट एट एलए ओलंपिक्स चलिए इसी पॉजिटिव कैनेडियन एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का शो मैं हूं अमिताभ जतिन जी हैं मेरे साथ एंड यू आर ट्यून टू जैम 101.3 जरा सुनिए तो

वेलकम बैक. यू आर ट्यून टू जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ, और मैं हूं आपका दोस्त अमिताभ. इंडिया में इंडिपेंडेंस डे वीकेंड तो खत्म हो गया, लेकिन सियासत, कोर्ट्स, स्टूडेंट्स और वर्कर्स, सब जगह गतिविधियां फुल स्पीड पर चल रही हैं. आज की इंडिया हेडलाइंस में पॉलिटिक्स भी, गवर्नेंस भी, पब्लिक इश्यूज भी, और वो सवाल भी, आम आदमी पर इसका असर क्या पड़ेगा. तो चलिए रुक करते हैं भारत की कुछ हेडलाइंस का. यूजीसी एनईटी कॉन्ट्रोवर्सी अब पॉलिटिकल इश्यू बन गई. एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बाद 3 सब्जेक्ट्स में फ्रेश एग्जामिनेशंस ऑर्डर किया. राहुल गांधी ने गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स को सिस्टम की गलतियों की कीमत चुकानी पड़ रही है, एंड इस बार हम राहुल गांधी की स्टेटमेंट से अग्री करते हैं. कावेरी वाटर डिस्प्यूट फिर से सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका को तमिलनाडु के लिए प्रिस्क्राइब्ड वाटर रिलीज डायरेक्शन फॉलो करने को सख्ती से कहा. डेकेड्स ओल्ड रिवर डिस्प्यूट वंस अगेन नेशनल हेडलाइंस में आ चुकी है. पॉलिटिक्स. इंडिपेंडेंस डे के बाद अब वंदे मातरम कंट्रोवर्सी चल रही है. दिल्ली पुलिस एक कंप्लेंट एग्जामिन कर रही है इन्वॉल्विंग सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी आफ्टर एन अलेज्ड डिसरप्शन ड्यूरिंग द नेशनल सॉन्ग एट कांग्रेस हेडक्वार्टर्स. इन्वेस्टिगेशंस अभी इंक्वायरी स्टेज पर ही है, एंड एलिगेशंस को कन्विक्शन समझना गलत होगा ऐसा हमारा मानना है. वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स अ मेजर गवर्नेंस डिबेट. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में पॉलिटिकल पार्टीज से अपील की कि वो वुमेन के लिए 33% रिप्रेजेंटेशन इम्प्लीमेंट करने पर कंसेंसस बनाया जाए, और हम उनकी इस स्टेटमेंट से 100% अग्री करते हैं, ऐसा होना ही चाहिए. वहीं चंडीगढ़ का यूनेस्को हेरिटेज साइट गेट एन आईआईटी ट्रीटमेंट. आईआईटी रुड़की एक्सपर्ट्स ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए डिटेल साइट और बफर मैनेजमेंट प्लान बनाने का ग्राउंड सर्वे शुरू कराया. हेरिटेज प्रिजर्वेशन मीट्स मॉडर्न प्लानिंग. तो ये थी इंडिया की सियासत, पॉलिसी और पब्लिक लाइफ की एक छोटी सी तस्वीर, शॉर्ट, शार्प और बिना पॉलिटिकल तमाशा ऐड किए. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और सुर्खियों के साथ. तब तक स्टे ट्यून टू जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ. जरा सुनिए तो.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
4: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
3: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
5: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
6: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर हम हमारे खानदान से नब्ज देखकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा करते हैं हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है अगर आप इन समस्याओं का जड़ से इलाज चाहते हैं तो तुरंत हमारा कांटेक्ट करें 647-327-8111 अस्थमा और एलर्जी त्वचा की बीमारियां कमर या घुटनों में दर्द या फिर अर्थराइटिस बालों की समस्याएं गैस अल्सर और पेट से जुड़ी समस्याएं लेडीज प्रॉब्लम्स वेट लॉस और सोराइसिस आज ही संपर्क करें केरला वैद्य रत्न पीवी राज ब्रैम्पटन और स्कारब्रो 647-327-8111 647-327-8111
7: आओ बच्चों आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ मैं
8: जी बिल्कुल बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी को अपनी मनपसंद कहानियाँ सुनने आना है हर रोज शाम 4 से 5 बजे ऑन CMR 101.3 टू एक्सपीरियंस अ न्यू ड्राइव टाइम शो जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ जरा सुनिए तो
9: एक किस्सा सुनो
6: हाँ जी मित्र भाइयों ये है जेएम 101.3 जतिन और अमिताभ के संग और हम हैं आपके दोस्त जतिन बंदर भाइयों आज की सबसे बड़ी आर्थिक खबर की बात करते हैं जो सीधे हम सबकी जेब और कैनेडियन इकोनॉमी से जुड़ी हुई है अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर का तनाव एक बार फिर चरम पर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नए टैरिफ लगाने की जो हेडलाइन डेडलाइन दी गई है सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 19 अगस्त की डेडलाइन तय की गई है अगर दोनों देशों के नेगोशिएटर्स किसी समझौते पर नहीं पहुंचे तो सीमेंट से लेकर हॉकी स्टिक्स और कई अन्य चीजों पर 50% तक का भारी टैरिफ लागू हो सकता है और यही वजह है कि वीकेंड पर भी वॉशिंगटन में बैठकों का दौर जारी रहा कैनेडियन ट्रेड मिनिस्टर डोमिनिक लेब्लांक और अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर के बीच बातचीत हुई है लेकिन जानकारों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है सबसे ज्यादा चिंता हमारे ऑटो सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है ऑटो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर टैरिफ लंबे समय तक बने रहे तो कई कंपनियां दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इसका असर जमीनी स्तर पर दिखने भी लगा है हाल ही में ब्रैम्पटन के स्टेलेंटिस प्लांट को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है उसने लोकल इकोनॉमी और नौकरियों पर चिंता बढ़ा दी है सिर्फ ऑटो ही नहीं एग्रीकल्चरल सेक्टर भी अलर्ट है क्यूबेक की प्रीमियर क्रिस्टीन फ्रेशेट ने भी इमरजेंसी मीटिंग की है और फेडरल सरकार से अपील की है कि डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर के सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम से कोई समझौता न किया जाए यानी कुल मिलाकर देखें तो ईस्ट से वेस्ट तक हर इंडस्ट्री की नजर इस वक्त वॉशिंगटन में चल रही बातचीत पर टिकी है अगले 48 आवर्स अहम है देखना होगा कि क्या बातचीत से रास्ता निकलता है या 19 अगस्त से नया आर्थिक झटका लगता है। करते हैं इंतजार। ये है जेएम 101.3। हम हैं आपके दोस्त यतीन।

Welcome back. You are tuned to Jam 101.3 with Jatin and Amitabh, and मैं हूँ अमिताभ. भाई मंडे आ चुका है लेकिन क्रिकेट की दुनिया बिल्कुल मंडे वाले मूड में नहीं लग रही. गॉल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को प्रेशर कुकर में डाल दिया है. वहीं ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश ने हिस्ट्री लिख दी और पाकिस्तान इंग्लैंड चैलेंज के लिए तैयार हो रहा है. चलिए रुक करते हैं टुवर्ड्स फ्यू क्रिकेट हेडलाइंस. गॉल में इंडिया फर्मली ऑन टॉप. इंडिया के 462 के जवाब में श्रीलंका डे 3 पर 284 रन पर सिमट गई. यंग स्पिनर मानव सुतार ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए. टीम इंडिया इन अ स्ट्रांग पोजीशन स्पेशली विद द गॉल विकेट एक्सपेक्टेड टू असिस्ट स्पिनर्स इवन मोर. वहीं डाउन अंडर बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया में बना दी हिस्ट्री. डार्विन टेस्ट में हासिल करी 9 विकेट विक्ट्री. बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर पहली एवर टेस्ट विन. कैप्टन नजमुल हुसैन शांतो ने इसे अपनी मुल्क की क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीतों में से एक रखा. ब्रीफ स्कोर्स: बांग्लादेश 426/57 for 1 बीट ऑस्ट्रेलिया 198/284 by 9 विकेट्स. हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल आर बांग्लादेश क्रिकेट फैंस. वेल प्लेड. वहीं पाकिस्तान के सामने अब इंग्लैंड का एग्जाम. पाकिस्तान की इंग्लैंड टेस्ट सीरीज अगस्त 19 से हेडिंगली में शुरू होगी और साउथ शकील ओवरसीज कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए बैटिंग पिलर्स में से एक होंगे, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है. इंग्लैंड कैंप में भी ड्रेसिंग रूम स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है. जो रूट ने टीम एनवायरमेंट में मिडनाइट कर्फ्यू हटा दिया है, पाकिस्तान सीरीज से पहले इंग्लैंड लीडरशिप डिसिप्लिन से ज्यादा प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भरोसा कर रहा है. हालांकि हाल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड इन मामलों में थोड़ा स्केची ही रहा है, ऐसा हमारा मानना है. तो दोस्तों, इंडिया का गोल कंट्रोल, बांग्लादेश का डार्विन धमाका और साउथ एशियन क्रिकेट फैंस के लिए मंडे ऑलरेडी सुपर हिट. कल फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की खास खबरों के साथ. तब तक स्टे ट्यून्ड टू जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ. जरा सुनिए तो.

0: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा
5: और मैं कृष्णा के लिए मक्खन लेकर आऊंगी.
6: अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे.
7: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं. खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी. इंडिया सजावट एंड पूजा Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
8: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos.

0: 4 से 5 बजे ऑन CMR 101.3 फॉर अ ब्रांड न्यू ड्राइव टाइम शो जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ. जरा सुनिए तो.
1: हाँ जी बिंद्र भाइयों, ये है जेएम 101.3 अमिताभ और जतीन के संग, और हम हैं आपके दोस्त जतीन. आइए करते हैं ब्रैम्पटन की और एक नजर. जरा सुनिए तो. ब्रैम्पटन में स्कूल ग्राउंड में हुई फायरिंग मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार. अप्रैल महीने में पील रीजन के रदरफर्ड रोड और कैनेडी रोड के पास स्थित एक स्कूल के मैदान में हुई डबल शूटिंग के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी. द गोर रोड पर भीषण सड़क हादसा, 1 ने जान गंवाई. द गोर रोड और कैसल ऑक्स क्रॉसिंग के पास एक पाथ फाइंडर एसयूवी और मिनी वैन के बीच हुई टक्कर में एक 20 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मिनी वैन में सवार 3 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. बिंद्र भाइयों, संभल के ड्राइव कीजिएगा क्योंकि आपके अपने मुस्कुराते हुए आप ही का इंतजार करते हैं. अब नजर करते हैं मिसिसागा की ओर. जरा सुनिए तो. गार्डन व्यू क्रेसेंट में घर में भीषण आग, 1 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती. मंडे तड़के विंस्टन चर्चिल बुलेवर्ड और ब्रिटानिया रोड वेस्ट के पास एक घर में अचानक आग लग गई. फायर ब्रिगेड ने मुस्तैदी दिखाते हुए आसपास के घरों को खाली कराया. धुएं की चपेट में आने से 1 व्यक्ति को इलाज के लिए ट्रोमा सेंटर भेजा गया है. जैक डार्लिंग मेमोरियल पार्क में हादसा, पानी में बहने से युवती की मौत. लेक ओंटारियो के किनारे जैक डार्लिंग मेमोरियल पार्क के पास पानी के तेज बहाव में बह जाने के कारण 1 महिला की दुखद मौत हो गई. बचाव दल ने तलाशी अभियान चलाकर उन्हें निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर दिया. बिंद्र भाइयों, मौसम सुहाना है, लेकिन सुहाना मौसम जिंदगी का सबसे बदतर मौसम न बन जाए, इसलिए सतर्क रहिएगा. अपनी जिंदगी से बहुत ही मोहब्बत कीजिएगा. जरा सुनिए तो. ये है जैम 101.3.

एक बार फिर से स्वागत आप सभी का दोस्तों एंड अ हैप्पी मंडे टू ऑल आवर बॉलीवुड फैंस. यू आर ट्यून्ड टू जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ. जरा सुनिए तो, वीकेंड बॉक्स ऑफिस का रिपोर्ट कार्ड आ चुका है. इमरान हाशमी मुस्कुरा रहे हैं. सनी देओल को कॉम्पिटिशन मिला है टफ. रणवीर सिंह ने एपोकलिप्स का अपना टिकट बुक कर दिया है. और SRK, AR रहमान और आशा भोसले हैं आज एक ही हेडलाइंस में. हमें और क्या चाहिए फिर. चलिए रुक करते हैं आज की कुछ एंटरटेनमेंट की दुनिया की हेडलाइंस का. बिग स्टोरी, अवारापन 2 का ब्लॉकबस्टर वीकेंड. इमरान हाशमी, दिशा पटानी स्टारर ने स्ट्रॉन्ग वीकेंड के बाद ₹100 करोड़ टेरिटरी को चैलेंज कर दिया और 2026 के सक्सेसफुल हिंदी रिलीजेज में रैपिडली क्लाइंब कर रही है ये फिल्म. बंटवारा 1947 को मिला बॉक्स ऑफिस का रियलिटी चेक. सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर ने वीकेंड में अप्रोक्सीमेटली 26.5 करोड़ इंडिया नेट कलेक्ट किए, लेकिन संडे पर सिग्निफिकेंट स्लो डाउन दिखाई दिया. द फिल्म इज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड. वहीं रणवीर सिंह का नेक्स्ट स्पेक्टिकल गेट्स ऑफिशियली रोलिंग. जय मेहता डायरेक्टेड प्रलय, एन एंड ऑफ द वर्ल्ड एक्शन थ्रिलर, मुंबई में फ्लोर्स पर चली गई है. रणवीर वंस अगेन लार्ज स्केल एक्शन टेरिटरी में दिखाई देंगे. फॉर म्यूजिक लवर, दिस वन इज स्पेशल. SRK प्लस रहमान प्लस आशा दीदी. AR रहमान के आशा भोसले ट्रिब्यूट प्रोजेक्ट में SRK भी फीचर करेंगे. जनरेशंस ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट के बिग गन्स एक ही फ्रेम में दिखाई देंगे. म्यूजिक की दुनिया से कुछ खबर. सलीम सुलेमान ब्रिंग कॉन्सर्ट एनर्जी टू देयर सेलिब्रेटेड म्यूजिकल प्रोजेक्ट भूमि बाय इन्फ्यूजिंग इट विद मैसिव लाइव कॉन्सर्ट प्रोडक्शन वैल्यूज, aiming to replicate the raw thrill, scale and high energy atmosphere of a stadium performance for home audience. Upcoming seasons ke liye inhone 10 music videos in just 3 days shoot kiye. Bhai wah. Rekha aur Umrao John, Melbourne mein nostalgia ka full on dose. Indian Film Festival of Melbourne mein restored Umrao John ki screening hui with Rekha herself attending while Rishabh Shetty opened this year's festival. OTT रेडार बबीता सिंह रिपोर्टिंग ऑन रिलीज होने वाली है जल्द. निमिषा सजायन और वरुण सोपटी की इन्वेस्टिगेटिव मिस्ट्री बबीता सिंह रिपोर्टिंग August 28 को प्राइम वीडियो पर आने वाली है. सीरियस क्राइम ड्रामा फैंस अपने वीकेंड कैलेंडर के लिए नाम नोट कर ले. द प्रोमोज आर लुकिंग रियली गुड. बॉलीवुड थ्रोबैक विद अ टेरिफिक स्टोरी. जावेद अख्तर ने रिवील किया है कि क्लासिक गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा लिखते वक्त इंस्पिरेशन रोमांस से कम और प्रोजेक्ट से ड्रॉप होने के डर से ज्यादा आई थी उन्हें. वेरी फनी दिस इज. अगर बिग स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया प्लस इमरान हाशमी फैन फॉलोइंग आपकी चीज है तो अवारापन 2 इज क्लियरली द फिल्म डोमिनेटिंग द हिंदी फिल्म कॉन्वर्सेशन दिस मंडे. तो दोस्तों, बॉक्स ऑफिस हो या OTT हो या फिर एवरग्रीन गाने, एंटरटेनमेंट का ट्रैफिक जैम पर कभी स्लो नहीं होता. तो सुनते रहिए जैम 101.3. जरा सुनिए तो.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
4: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
3: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
5: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
6: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
7: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ मैं।
8: जी बिल्कुल, बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी को अपनी मनपसंद कहानियाँ सुनने आना है हर रोज शाम 4 से 5 बजे ऑन CMR 101.3 टू एक्सपीरियंस अ न्यू ड्राइव टाइम शो जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। जरा सुनिए तो
9: एक किस्सा सुनो।
10: हाँ जी मित्र भाइयों, हम हैं आपके दोस्त जतिन। आइए करते हैं जिंदगी की बात। एक इंसान घने जंगलों में भागा जा रहा था। शाम हो चुकी थी, अंधेरे में उसे कुआं दिखाई नहीं पड़ा और उसमें गिर गया। लेकिन गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई। जब उसने नीचे झांका तो उसकी आंखें फटी फटी रह गई, क्योंकि कुएं में 4 अजगर मुंह खोले उसे देख रहे थे और जिस डाल को वह पकड़ा हुआ था उसे 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। आदमी घबरा गया और सोचने लगा कि हे भगवान, अब क्या होगा। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। हाथी के पेड़ हिलाने से मधुमक्खियां उड़ने लगी और शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद उस इंसान के होठों पर आ गिरी। उसने प्यास से सूख रही जीभ को होठों पर फेरा और शहद की उस बूंदे में गजब की मिठास मिली। वो खुश हो गया। कुछ पल बाद फिर शहद की एक और बूंद उसके मुंह में टपकी। अब वह इतना मगन हो गया कि अपनी मुश्किलों को भूल गया और शहद की बूंदों का इंतजार करने लगा। तभी उस जंगल से शिव जी और पार्वती जी गुजर रहे थे। माँ पार्वती जी ने उस इंसान की दयनीय हालत देखकर भगवान शिव से उसे बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। उस इंसान ने कहा, एक बूंद और शहद को मैं खा लूं, वो मेरे जीभ पर आ जाने दो, मेरे होठों पर एक बूंद और गिरने दो, फिर आपका हाथ पकड़ता हूं। और इस तरह एक बूंद एक बूंद एक बूंद करके वो और बूंदों का इंतजार करने लगा। आखिर थक हार कर शिव जी वहां से चले गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा। ठीक ऐसा ही हाल हमारा भी है। आइए इस कहानी को अपने संदर्भ में देखते हैं। यह आदमी जिस जंगल में जा रहा था वह जंगल है दुनिया। अंधेरा है हमारा ज्ञान, पेड़ की डाली है हमारा आयुष्य, और जिसे दिन रात रूपी चूहे कुतर रहे हैं। धमंड का मद मस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की बूंदे सांसारिक सुख है जिनके कारण मनुष्य खतरे को भी अनदेखा कर देता है, और हाँ जी, और उन खतरों से निकलने वाले रास्तों की ओर से मुंह फेर लेता है, यानी कि सुख की मोह माया में फंसे इंसान को परमात्मा भी बचाए तो कैसे बचाए। बंदर भाइयों, संसार का सुख अच्छा है लेकिन उसमें ही डुबो रहना शायद अच्छा नहीं है। ये थी जिंदगी की बात। हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: अगर फ्यूचर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में है आपका इंटरेस्ट, लेकिन आपको पता नहीं शुरुआत कैसे करें या इसमें सक्सेसफुल कैसे हूँ, तो कॉल कीजिए कुमार 9059294881। कुमार आपको अपनी कई सालों की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आपको गाइड करेंगे एक्सपर्टली यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी आप इजिली 100 से $300 बना पाएंगे हर दिन। बस चाहिए एक फास्ट कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, टाइम, डेडिकेशन और कुमार के एक्सपर्ट गाइडेंस। टू बिकम एन एक्सपर्ट ट्रेडर कॉल 9059294881 और विजिट kumartradessolutions.com।
1: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपरविजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम,
2: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर के फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर। हम हमारे खानदान से नब्ज देखकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। अगर आप इन समस्याओं का जड़ से इलाज चाहते हैं, तो तुरंत हमारा कांटेक्ट करें 6473278111। अस्थमा और एलर्जी, त्वचा की बीमारियां, कमर या घुटनों में दर्द या फिर अर्थराइटिस, बालों की समस्याएं, गैस अल्सर और पेट से जुड़ी समस्याएं, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस और सोराइसिस। आज ही संपर्क करें केरला वैद्य रत्न पीवी राज, ब्रैम्पटन और स्कारब्रो 6473278111, 6473278111।
7: याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: जी हाँ, करण अर्जुन, राम श्याम, सीता गीता और आप सभी को बस ट्यून करना है हर शाम 4 से 5 बजे ऑन CMR 101.3 फॉर अ ब्रांड न्यू ड्राइव टाइम शो जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। जरा सुनिए तो।
6: हाँ जी मित्र भाइयों, ये है जेएम 101.3। हम हैं आपके दोस्त जतिन। बेंदर भाइयों, आइए करते हैं सेहत की बात। अमेरिकी न्यूरोसाइंटिस्ट जेरेड कुनी और वाद का कहना है कि स्कूलों में स्क्रीन और डिजिटल टूल्स का बढ़ता इस्तेमाल बच्चों की सीखने की क्षमता और विकास को नुकसान पहुंचा रहा है। उनका दावा है कि आज के बच्चे अपनी उम्र में पिछली पीढ़ी के मुकाबले मानसिक रूप से कम सक्षम हो रहे हैं। हॉरवाथ ने अपनी किताब द डिजिटल डेल्यूजन में लिखा है कि करीब 2000 के बाद पश्चिमी देशों में IQ स्कूल, जबकि स्कूल में बिताया समय बढ़ता गया है। उनका कहना है कि स्कूलों में लैपटॉप का इस्तेमाल खासकर 2010 से 2012 के बीच तेजी से बढ़ा। हॉरवात के मुताबिक अमेरिका में अब 88% स्कूलों में हर छात्र के लिए एक कंप्यूटर की व्यवस्था है। वहीं भारत के 65% स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था है। बेंदर भाइयों, पढ़ाई में पीछड़ रहे ज्यादा स्क्रीन देखने वाले बच्चे, उनकी रिसर्च यही कंक्लूड करती है। कहा गया है कि नतीजा बिल्कुल साफ है, स्कूल में जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम, स्कोर उतना ही नीचे। औसतन जो छात्र रोज 6 घंटे से ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे उनके स्कोर उन छात्रों से 66 पॉइंट कम थे जो कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते थे। यानी कि न्यूरो साइंटिस्ट के मुताबिक स्कूलों में बढ़ता स्क्रीन टाइम घटा रहा है बच्चों की सीखने की क्षमता। और इसमें भी अब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, चैटबोट, कहा जाता है कि बच्चे के माइंड पर इसका बहुत ही बड़ा असर हो रहा है। जेन जी और जेन अल्फा की आस्था पर सोशल मीडिया और एल्गोरिदम का भी बड़ा असर हो रहा है। बस बहनों और भाइयों, अपने बच्चों को सही एडवाइस दीजिएगा और एज अ पेरेंट हमें भी हमारा स्क्रीन टाइम जरूर कम करना चाहिए। ये है जेएम 101.3, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

तो बस दोस्तों, मंडे का सफर यहीं तक। उम्मीद है आपकी वीक की शुरुआत हमारे साथ थोड़ी और मुस्कुराहट के साथ हुई होगी। कल फिर मिलेंगे नए गीत, नई बातें और नई एनर्जी के साथ। मैं हूं अमिताभ, आप जुड़े हुए हैं जैम 101.3 के साथ। और जाते जाते भी हमारा यही कहना है, जैम 101.3 जरा सुनिए तो।

नाइट अगेन ऑन द डे जहाँ मौसम कैसा भी हो, नींद कितनी भी पूरी हो गई हो, वीकेंड कितना भी ऑसम क्यों ना गया हो, दुनिया भर की न्यूज में से कितनी ही हैप्पी वाली टाइप की मिल गई हो, सुबह की बेस्ट चाय भी मिली हो, घर से निकलते वक्त लड़ाई भी ना हुई हो, और शाम को किसी से मिलने का वादा हो जो कि पूरा होता दिख रहा हो, या बस यूं ही खुश रहने का इरादा किया हुआ हो, तो भी मंडे होना ही, वीकेंड के बाद आना ही, अब पूरा वर्क वीक अभी पड़ा है सामने, ये दिख जाना ही, यही ना मुझे लगता है मूड खराब करने के लिए काफी हो जाता है। सब चाय कॉफी से बने मूड को फेल करने के लिए काफी हो जाता है ना। सो ऑन दिस मंडे की वाइब्स बनती नहीं भाई, बनाई जाती है वाली नोट। दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कड़ CMR 101.3 FM पर सिंग कि अपने ही तो हाथ में होता है एक्चुअली उमंगों से दिल को भरे रखना, मंडे हो या संडे, क्यों किसी को सौतेला सा रखना, है ना। इतने रंग होते हैं ना देखो दुनिया में, और अपने ही तो हाथों में होता है एटीट्यूड, होता है अपना ही कि हर दिन के हर पल को या तो बेरंगा रखो या रंग रेजा सा कर देना।

हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। Visit veinsautogroup.com.

अच्छा ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन, इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: क्या आप भी एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द से जूझ रहे हैं, या आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सिरोसिस जैसी किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं? सभी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं केरला वैद्य रत्न पीवी राज फ्रॉम सहज केरला आयुर्वेदा एंड ब्रैम्पटन एंड स्कारबरो। ये सिर्फ नर्व्स देखकर ही सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। खान दानी गुण है, इनके इलाज से बहुत सारे लोगों का बहुत फायदा हुआ बताया जाता है। कॉल इन टुडे एट 6473278111, 6473278111।
4: BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1,

0: डॉन वैली नॉर्थ हंडे के हंडे अपग्रेड योर राइड सेल्स इवेंट का फायदा उठाइए। सिर्फ 0.99% से फाइनेंसिंग और साथ में 90 दिन तक कोई पेमेंट नहीं और पाए $1,000 तक का अपग्रेड बोनस भी। ऑफर सिर्फ August 31st तक है। At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit DonValleyNorthHyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamper.
1: Don Valley North Hyundai,
0: a proud member of Wayne's Auto Group.
2: Fresh Breeze, new release on CMR at 5 p.m.
3: All right, filmy nukar. CMR 101.3 FM पर आप हैं स्वाति और फाइस विनी के साथ 7 बजे तक रहता है हमारा आपका साथ। सोचे याद दिला दूं। अच्छा, आज जो गाना मैंने चुना है ना, उस पे एक थॉट भी आ रहा था कि अक्सर हमने सुना है कि कोई भी गाना या धुन बनी तो थी पर इस फिल्म के लिए बनी थी और फिर रिजेक्ट कर दी गई थी, क्योंकि जब सिलेक्शन हो रहा था फॉर द एल्बम और फॉर द फिल्म उस गाने का,

ही पोएटिक सा है। चिनार के पेड़, वादियां, सुबह की मिस्ट, जगते सपने, ये सब आपको महसूस होंगे। कश्मीर का एक विजुअल भी आंखों में छाएगा। आप नहीं भी गए ना वहां तो भी। लिरिक्स आर बाय स्वनंद किरकिरे, तो ही कुड डू दैट अपने सिर्फ राइटिंग से। म्यूजिक अमित त्रिवेदी का है। मिडिल ईस्टर्न फोक और मॉडर्न पॉप के टेक्सचर इन्होंने ब्लेंड कर दिए हैं एक साथ। एंड फील जो गाने की है वो मिल मिला के बहुत ही हैप्पी, होपफुल सी, नाइस सी है। यू नो दैट एक्साइटमेंट, दैट इनोसेंस, दैट क्यूरियोसिटी ऑफ फर्स्ट लव, कुछ कुछ वैसी सी। आई लाइक इट ओवरऑल। इट्स कॉल्ड चिनारों से। आर फ्रेश प्लीज न्यू रिलीज।

0: जेनेसिस मार्कम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो। ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 GV70 या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर अप टू 39 मंथ्स। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट Woodbine Avenue एंड John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
1: कुछ उलझे मेरी ख्यालों की।

किशोरदा भी गा के गए, वो फिल्म थी ना मनपसंद, कि लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। पर फिर ये भी सोचने लगती हूँ कि सभी मिठास के हकदार कहाँ ही होते हैं। सोचो ना, अगर समंदर का पानी कहीं मीठा होता तो लोग तो उसे भी बोतल में भर ही डालते, है ना। अब देखा जाए तो उसका खारापन ही तो उसकी आजादी है, नहीं? क्या कहते हैं? स्टूडियो के नंबर 416-593-0055।

मीठी बोलियां वो भी लगती हैं जब कोई बहुत दिल से, ऑब्वियसली दिल से एंड ऑनेस्टली हमारी तारीफें करता है, या हमें प्यारा सा कोई संदेश हमारे लिए हम तक किसी तरह पहुंचा पाता है ना। आमतौर पे समय निकाल के लोग ये काम कम ही करते हैं, मन में सोचते हैं, मन में रखते हैं, पर कहने में कंजूसी करते हैं। बट यस, हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं कई बार फिल्मी नुक्कड़ पर, जो अपनी दिल की बात बेबाक कहना पसंद करते हैं और अपना संदेश उन तक पहुंचाना पसंद करते हैं जिनके लिए मन में वो भाव होते हैं, है ना। ऐसा ही अगला एक गाना है मेरे पास, वो है खास सुहाना के लिए। सुहाना, अगर आप सुन रही हैं तो आप समझ गई होंगी ये किसकी तरफ से है। वेल, इरशाद की तरफ से इरशाद करते हैं ये खास गाना आप सबके लिए, बट यस मोस्टली सुहाना के लिए।

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: It's time to Toyota at Markville Toyota. Corolla L lease kijiye from $84 weekly for 60 months. Ya Corolla Cross L front wheel drive lease kijiye from $98 weekly for 60 months. Or up Tundra 4x4 Crew Max TRD lease kijiye from $173 weekly for 36 months. Don't miss out. Inventory limited hai. Offer sirf jab tak supplies last kare. Hurry. More details ke liye markville.com visit kare. Located at 5362 Highway 7 in Markham. Markville Toyota, a proud member of Vane's Auto Group.
2: फायदा उठाएं ऑफिस के हॉटर ट्रेड्स का विद अमित खुराना. 3 years fixed 3.94%, 5 years fixed 4.04%, 5 years variable 3.50%, और साथ में हॉट हॉट कैश बैक भी लें अप टू 5600 एंड आइसिंग ऑन द टॉप गिफ्ट कार्ड अप टू 1500. कॉल अमित खुराना एट 6473412785. दैट्स 6473412785.
3: ये है राजधानी राजधानी राजधानी.
4: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे. जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस.
5: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक. QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें.
4: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा.
6: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca.
7: हर कहानी की अपनी एक आवाज होती है और इस अगस्त वो आवाज गूंजेगी मिसेस सागा में. 10 से 23 अगस्त तक मिसेस सागा मल्टीलिंगुअल फ्रिंज फेस्टिवल 2026 लेकर आ रहा है 12 प्रोडक्शंस, 48 परफॉर्मेंसेस, ड्रामा, कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री और एक्सपेरिमेंटल थिएटर. हर शो एक नया एक्सपीरियंस. सावित्री थिएटर ग्रुप के साथ सेलिब्रेट कीजिए अपनी लैंग्वेज और कल्चर को. टिकट्स और पूरे स्केड्यूल के लिए विजिट करें 2026.mississaugafringe.ca या कॉल करें 647-640-7999 पर.
8: Another Don Clean with the Don Ducks.
9: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
10: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
9: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
10: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
9: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
10: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
9: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
8: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.

That was from Partner, one of my very favorite and very delightful movies as well. David Dhawan ki film thi. Matlab inka na ek genre hi alag hota hai. Mujhe lagta hai happy happy sa. Jo kehte hai na khalis jahan aapko milta hai entertainment aur bas entertainment. Uske alawa aur kuch bhi nahi. Ek cheez aur milti hai. Acha sa music bhi hota hai. Aksar inki filmon ka bahut peppy sa music hota hai. Inki filmon ki na ek repeat value bhi hoti hai. For the reason inki film has the power to make you smile over and over again and again, है ना? ये बात तो आप मानेंगे। अब ये कहते हैं, मैंने के इंटरव्यू एक पढ़ी थी कि इनिशियली एक्टिंग करना चाहते थे, पर जब इन्होंने अपने अराउंड 30 शाह जैसे एक्टर्स देखे तो इन्हें लगा कि भाई हमसे ना हो पाएगा। वो होता है ना कई बार कि कुछ लोग इतना अच्छा हमारे सामने हमें परफॉर्म करते दिखते हैं कि वो इंस्पिरेशन बन जाते हैं कई बार, और कई बार कुछ इतना अच्छा परफॉर्म करते दिखते हैं कि लगता है कि यार ये लेवल तो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, तो छोड़ो। तो बस मेरे ख्याल से वो छोड़ो वाली चीज उनके साथ हुई। वैसे वो फिल्मी कीड़ा था तो डायरेक्टर तो ये बन ही गए, और इस डायरेक्टर नंबर वन की कल बर्थडे थी, बट मैं देख रही थी कि इनकी फिल्मों में से कुली नंबर वन और जुड़वा ये तो दोबारा बन गई। आई वुड रियली लाइक टू सी द रीमेक ऑफ पार्टनर एज वेल, पार्टनर टू। जस्ट चिल चिल जस्ट चिल।

0: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.49% से फॉर 36 मंथ्स। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम। बीजी भी इन स्टॉक आपकी इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस के लिए। We pay top dollar for your trade. It's time to Toyota at Don Valley North Toyota.com. Located here, 3300 Steeles Avenue, East Markham. At Don Valley North Toyota. A proud member of Vane's Auto Group.
1: Right, it's time now for a quick health की बात, जहां हम करेंगे केरला वैद्य रत्न पी वी राज जी से बात। छोटी सी है मुलाकात, जानेंगे what to do जब सेहत में हो जाए हमारे कुछ unfavorable से बदलाव। वैजी का नंबर आफ्टर दिस क्विक टॉक इज 6473278111। तो करें शुरुआत। वैजी नमस्कार, और पहले ये बता दीजिए कि मौसम जो उठा पटक करता है, उतार चढ़ाव इसमें होते रहते हैं, क्या किया जाए कि हमारी सेहत पे उसका असर ना पड़ पाए?
2: नमस्ते जी, आपने लिजरेंट्स के लिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अभी कुछ दिनों से इधर ओंटारियो में भी वेदर भी उतना ठीक नहीं है। एक एक दिन थोड़ा सा ठंड लगता है, एक एक दिन थोड़ा गर्मी लगता है, एक एक दिन थोड़ा सा बारिश गिर रहा है, तो लास्ट वीकों से थोड़ा सा एयर भी पोल्यूटेड हो गए। ये मौसम में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाता है, एक्स्पेशली लोगों को, कुछ लोगों को ये रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के ऊपर, ब्रीथिंग इश्यूज़ के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। आस्थमा पेशेंट्स के लिए भी ये वेदर बहुत ख़राब है, और ये वेदर में लोगों को ऑटोमेटिकली बोन्स भी थोड़ा वीकनेस हो जाता है, जॉइंट पेन, बैक पेन, नी पेन, ऐसा आर्थराइटिस भी थोड़ा सा बढ़ने का चांस होता है। इसीलिए सभी लोग ये वेदर में थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा, और पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीना है, एटलीस्ट 2-3 लीटर पानी एवरी डे पीना है, वो भी थोड़ा सा लूक वार्म वाटर जैसे पीना।
1: चलिए, थैंक यू फॉर दिस टिप। पर आपने भी बोन्स की बात करी, तो आर्थराइटिस से जो लोग सफर कर रहे हैं उनके लिए कोई खास सजेशन देना चाहेंगे?
2: दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल 60% पीपल दे आर सफरिंग विथ आर्थराइटिस। कुछ लोगों को घुटनों में पेन होता है, कुछ लोगों को कमर में होता है, कुछ लोगों को शोल्डर में, कुछ लोगों को नेक में, तो कुछ लोगों को सायाटिका का प्रॉब्लम, कुछ लोगों को मसल्स का प्रॉब्लम, तो कुछ लोगों को आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ओस्टियो आर्थराइटिस। तो इसका कारण अलग अलग हो जाता है, लोगों का वीक इम्यूनिटी का कारण से भी होता है, ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है उसका कारण से भी होता है, नर्वस सिस्टम थोड़ा वीकनेस होता है उसका कारण से भी होता है, कुछ लोगों को वेरिकोस वीन्स भी होता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ओवरवेट, ओबेसिटी, दैट इज आल्सो मेन प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड नाउ। सो ओबेसिटी का कारण से भी होता है, कुछ लोगों ने नीचे गिर जाता है तो उसका कारण से भी हो जाता है, मसल्स भी पकड़ता है कुछ लोगों को उसका कारण से भी होता है, और घुटनों में कुछ लिगमेंट होता है ना, कार्टिलेज, वो शॉर्टेज होता है कुछ लोगों को उसका कारण से भी होता है। तो इसका कारण से लोग चलने में, उठने में, बैठने में बहुत तकलीफ होता है, रेगुलर काम भी होता है ना वो भी कर नहीं सकते, तो इसका कारण से बहुत लोगों को रात को नींद भी नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ होता है, सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट्स ऐसा भी होता है। तो इसके लिए हमारे पास तो बहुत अच्छा दवाई केरला में, तो हम हमारा हेल्प से बहुत अच्छा जड़ी बूटियों का दवाई बनाता है, तो दवाई बना के देता है, वो दवाई खाने के बाद कुछ ऑयल्स भी होता है वो भी देता है, तो उसके बाद दुनिया में सभी लोगों को भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है हमारा दवाई के साथ। हमारे पास स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, वीकनेस के लिए, और कपल्स को शादी होता है बहुत साल को पहले लेकिन बच्चा नहीं मिलता है, तो उसके लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो लोगों का शरीर में, उसके लिए भी बहुत अच्छा दवाई है। और वेट लॉस के लिए, लिवर इश्यूज होता है ना, फैटी लिवर, उसके लिए, हेयर का प्रॉब्लम्स होता है ना उसके लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होता है ना उसके लिए, डायबिटीज के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए, माइग्रेन के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छा दवाई मिल जाता है।
1: थैंक यू वेजी फॉर दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन। आई विल रिमाइंड टू ऑल माय फिल्मी नुक्कड़ लिसनर्स कि वेजी दो लोकेशंस पर बैठते हैं, एक ब्रैम्पटन और दूसरी स्कार्बरो में। आपके पास जो भी लोकेशन है आप वहां जाके मिल सकते हैं। नब्स देखकर बीमारी बता देते हैं ये, और हर्बल जड़ी बूटियों से ट्रीटमेंट होता है आपका, तो नो साइड इफेक्ट्स। काफी लोग उठा चुके हैं इसका फायदा, आप भी उठाएं। कॉल हिम एट 6473278111, 6473278111।
2: थैंक यू स्वाति जी।

0: लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन। 9054586808।
2: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? Don Valley North Lexus पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स। आज ही विजिट करें donvalleynorthlexus.com, अ प्राउड मेंबर ऑफ विंस ऑटो ग्रुप।
3: घर कहीं भी लेना हो

0: फॉर एनी इन्फॉर्मेशन कॉल सौरभ सबरवाल 6478648844 दैट्स 6478648844
1: और विजिट teamsabarwal.com
2: योर सर्च एंड्स हियर।

춤까? 춤까? 이 가나 was supposed to be only instrumental melody as a homage to Jhumka Girare hit track by Madan Mohan ji. तो प्रीतम दा की तरफ से ये ट्रिब्यूट था उनके लिए, बट देन अरिजीत सिंह ने जब ये सुना तो उनसे रहा नहीं गया. उन्होंने जिद की कि भाई मुझे तो ये गाना है, लिरिक्स डालो इसमें. प्रीतम दा ने ट्विटर पर देन जनता से पूछ डाला कि क्या किया जाए, बोल डाले जाए या धुन को यूं ही कुंवारा अकेला तन्हा छोड़ दिया जाए. अब पीपल लव द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ट्रायो, प्रीतम दा, अरिजीत सिंह एंड अभिजीत भट्टाचार्य, और इन्होंने कहा कि नहीं नहीं किया ही जाए. मतलब जिन्हें इस ट्रायो से हो प्यार वो इस बात से कैसे करते इनकार, वो धुन को खाली रिलीज कैसे होने देते यार. बोलो तो. वन मोर बाय दिस ट्रायो लाइंड अप नेक्स्ट फॉर द फैंस.

0: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। Visit veinsautogroup.com.
1: Foot facts with Fact Factory. मुझे तो मालूम है, पर क्या आपको पता है? Only on Filmy Nukkad. And here I came across a fact. खासकर फूडीज के लिए, खास उन मीठों के चीटों के लिए जो खास जलेबी के प्रेमियों के लिए आप कह सकते हैं। कहते हैं कि जलेबी का पहला जिक्र जो था वो मिला था 13th सेंचुरी में इन द कुक बुक ऑफ दैट टाइम, जिसका नाम था किताब अल तबीख। मेरे ख्याल से मैंने ठीक प्रोनाउंस किया है, जहां जलेबी का नाम जलाबिया था विद इट्स ओरिजिन इन वेस्ट एशिया। फिर ड्यूरिंग मिडीवियल टाइम ये भारतीय व्यंजन का हिस्सा बन गई और ऐसी बनी कि हमारे सुबह शाम का नाश्ता, सेलिब्रेशंस सब में ना एक अच्छी सी मीठी सी मिठास घुल गई। वेल, जलेबिया इज से ये जो जलेबी बनने तक का जो सफर है ये 15th सेंचुरी में जाके पूरा हुआ, जिसका जिक्र एक स्कल्पचर में आता है जिसका नाम है प्रियम कर्नर्प कथा, अगर आप देखेंगे तो उसका नाम ये है, और ये एक जैन ऑथर थे जिन्होंने लिखा था। बाकी तो खैर जैसे कि शेक्सपियर ने कहा भी है, मैं काफी कोट कर जाती हूँ उन्हें, कि नाम में क्या रखा है, तो ये जलेबी हो या जलाबिया, यहाँ की हो या वहाँ की या इवन अफगान की, बात तो स्वाद की है। हाँ, पर हम तो स्वाद का मजा लेते हैं और इस गाने का मजा लेते हैं। अफगान जलेबी कमिंग अप नेक्स्ट।

0: डॉन वैली नॉर्थ हंडे के हंडे अपग्रेड योर राइड सेल्स इवेंट का फायदा उठाइए। सिर्फ 0.99% से फाइनेंसिंग और साथ में 90 दिन तक कोई पेमेंट नहीं और पाए $1,000 तक का अपग्रेड बोनस भी। ऑफर सिर्फ August 31st तक है। At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit DonValleyNorthHyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamberg.
1: Don Valley North Hyundai, doing
2: a proud member
1: your
2: of
1: way.
2: Wayne's Auto Group.
3: Well, मैं सोच रही थी कि अगर हम किसी से कहें कि हमें उनसे प्यार है और सामने वाला रेसिप्रोकेट वैसे ही कर जाए कि हमें भी तुमसे प्यार है, you know? Me too. तो कितना आनंद आ जाता है, जिंदगी का मजा दुगना चौगुना दस गुना, पता नहीं कितने गुना हो जाता है। Well, मुझे तो आज कबूतर वाली फीलिंग आ रही है। पंछी तो मैं हमेशा हमेशा हमेशा से महसूस करती हूँ, लेकिन टुडे आई एम एक्चुअली फीलिंग लाइक अ कबूतर जो कि इधर से उधर कबूतर इसकी चिट्ठी लेके जाता है, फिर उसका संदेश लेके जाता है। बट अच्छा लगता है व्हेन आई नो दैट दिस इज सो ऑनेस्ट, दिस इज सो ट्रू। ये दिल से लिखे संदेश है जो बस मेरे कबूतर के जरिए, मतलब मैं कबूतर के जरिए इधर से उधर पहुंचाए जा रहे हैं। मुझे लगता है वैसे तो डायरेक्ट कहने की बात अलग होती है, पर कई बार इनडायरेक्टली कहने और समझ जाने की बात भी मजेदारी होती है। तो वेल, अभी जो मैसेज आया इधर से, ये मैसेज पहुंचा है इरशाद के लिए फ्रॉम सुहाना। वेल, कि तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई।

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: Genesis Markham mein luxury milti hai ek aise experience ke saath jo expectations se bhi aage ho. Beautifully designed 2026 GV70 ya 2026 GV80 ko lease kare sirf 2.4% se for up to 39 months. Book your test drive today. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
2: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453-5353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
3: Another Don clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: It's time to Toyota at Markville Toyota. Corolla L lease kijiye from $84 weekly for 60 months. Ya Corolla Cross L front wheel drive lease kijiye from $98 weekly for 60 months. Or up Tundra 4x4 Crew Max TRD lease kijiye from $173 weekly for 36 months. Don't miss out. Inventory limited hai. Offer sirf jab tak supplies last kare. Hurry. More details ke liye markville.com visit kare. Located at 5362 Highway 7 in Markham. Markville Toyota, a proud member of Vane's Auto Group.
6: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती.
7: मगर क्यों? पिताजी नहीं माने क्या?
6: वो बात नहीं है. हम जब भी घूमने जाते हैं, तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो. ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो.
7: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
0: हाँ, सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा. रेडियो CMR at 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव.

from Force, which was directed by Nishikant Kamath. Rishim bhi actually इन्होंने ही direct करी थी. बहुत talented थे, पर बहुत जल्दी चले गए थे. आज ही के दिन at the age of 50. मतलब वो साल भी मुझे लगता है एक अजीब सा था, अनवांटेड अनलाइक्ड मिशन पर जैसे निकला हुआ हो. उसी साल अगस्त 17 को संगीत मार्तंड पंडित जसराज भी नहीं रहे थे. पूरी लाइफ देखा जाए तो उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल को दे दी थी, है ना. और ये हम मान सकते हैं कि लेगेसी है उनकी जबरदस्त जो वो छोड़ के गए हैं. पर यू नो, कलाकार ऐसे जैसे कि वो थे, अपने जाने से एक वैक्यूम सा भी छोड़ जाते हैं जो उनके अलावा मुझे लगता है कोई और नहीं भर पाता, है ना. खासकर व्हेन इट कम्स टू क्लासिकल म्यूजिक, तो इट अप्लाइज टू पंडित जसराज जी ऑल द मोर. वेल, क्लासिकल की बात आई है तो बंदिश बैंडिट्स मुझे याद आती है, पार्ट वन एंड टू, बोथ सुपर्ब एंड सुपर्ब म्यूजिक भी. शंकर महादेवन जी को तो मुझे लगता है सैल्यूट देना बन जाता है फॉर इट्स म्यूजिक. क्लासिकल हो या फ्यूजन, या यू नो दैट इंटेलेक्चुअल कुछ या मेलोडियस छेड़खानियां जो इन्होंने करी, सभी काफी सुरीली थी. टू गुड, है ना.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.49% से फॉर 36 मंथ्स। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम। BZB इन स्टॉक आपकी इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस के लिए। वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.
2: BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1, Mustafa Zahid on August 22nd.

0: एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द से जूझ रहे हैं या आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सिरोसिस जैसी किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं केरला वैद्य रत्न पीवी राज फ्रॉम सहज केरला आयुर्वेदा एंड ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो। ये सिर्फ नर्व्स देखकर ही सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। खान दानी गुण है, इनके इलाज से बहुत सारे लोगों का बहुत फायदा हुआ बताया जाता है। कॉल इन टुडे एट 6473278111 6473278111।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: कल के क्लासिक्स, आज के चार्ट बस्टर्स, रीमिक्सेस, द हिट फैक्टर।

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: अब फायदा उठाएं ऑगस्ट के हॉट ट्रेड्स का विद अमित खुराना. 3 years fixed 3.94%, 5 years fixed 4.04%, 5 years variable 3.50%, और साथ में हॉट हॉट कैश बैक भी लें अप टू 5600 एंड आइसिंग ऑन द टॉप गिफ्ट कार्ड अप टू 1500. कॉल अमित खुराना एट 6473412785. दैट्स 6473412785.
2: ये है राजधानी राजधानी राजधानी.
3: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे. जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस.
4: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक. QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें.
3: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा.
5: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca.
6: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353. 6474535353.
7: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
8: Hybrid के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन क्या एक गैस Lexus आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? Don Valley North Lexus पर NX350 और RX350 premium packages immediate delivery के लिए available हैं. और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स. लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स. आज ही विजिट करें donvalleynorthlexus.com. अ प्राउड मेंबर ऑफ विंस ऑटो ग्रुप.
0: फॉलो अस ऑन फेसबुक फिल्मी नुक्कड़. इट्स द फ्री टाइम.

Well, ये लापता एक था टाइगर ऑफ 2012 मिल गया था वापस इन 2017 as टाइगर जिंदा है. पर दिस टाइगर एंड गब्बर हैज समथिंग इन कॉमन क्योंकि दोनों के दोनों इंट्रोड्यूस हुए थे टू पब्लिक ऑन ऑगस्ट 15th ओनली. बस साल अलग अलग थे इनके. शोले वॉज रिलीज ऑन ऑगस्ट 15th इन 1975 फिल्म विद आइकॉनिक कैरेक्टर्स एंड आइकॉनिक डायलॉग्स. शोले जो अभी तक नहीं बुझे क्योंकि पब्लिक सिंक्स टिल डेट कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: घर कहीं भी लेना हो

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: हर कहानी की अपनी एक आवाज होती है और इस अगस्त वो आवाज गूंजेगी मिसेस सागा में। 10 से 23 अगस्त तक मिसेस सागा मल्टीलिंगुअल फ्रिंज फेस्टिवल 2026 लेकर आ रहा है 12 प्रोडक्शंस, 48 परफॉर्मेंसेस, ड्रामा, कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री और एक्सपेरिमेंटल थिएटर। हर शो एक नया एक्सपीरियंस। सावित्री थिएटर ग्रुप के साथ सेलिब्रेट कीजिए अपनी लैंग्वेज और कल्चर को। टिकट्स और पूरे स्केड्यूल के लिए विजिट करें 2026.mississaugafringe.ca या कॉल करें 647-640-7999 पर।
4: मामा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा
5: और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी।
6: अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
7: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
8: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर। Wayne's Auto Group is always there. Wayne's Auto Group, Wayne's Auto Group, Canada. Visit waynesautogroup.com.
9: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
10: You are tuned into CMR at 5 PM with RJ Swati on Filmy Nukkad. It's the free time.

0: FOMO.
1: Do advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज मिशलिन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप चार नए टायर्स खरीदते हैं इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर For details, visit mymechanicauto.ca.
2: BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD Bank Group. Day 2 brings you unforgettable Qawwali Night.

0: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाए अपने सीजनल टायर्स और करवाए सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.49% से फॉर 36 मंथ्स। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम। बीजीबी इन स्टॉक आपकी इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस के लिए। वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.
0: Giving your mood a kick. It's Nukkad Hit After Hit.

खो गया है या जो चाहिए उसकी ढूंढ मचाना तो सही है, पर अक्सर ना लाइफ में कुछ यूं है होता कि बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा, पास होते हुए भी वो प्यार हमें अक्सर नहीं दिखता। एंड दैट्स व्हाई इट्स सेड कि द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी कंसिस्ट्स नॉट ओनली इन सीकिंग न्यू लैंडस्केप्स बट इन हैविंग नई नई आंखें, बोले तो नजरिया। सो ऑन दिस नेशनल डिस्कवरी डे टुडे, दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ सेइंग कि भाई डिस्कवरी हिस्ट्री की हो, जगह की हो, सच्ची अच्छी बातों की हो, खुद की हो या खोए हुए दिल जिगर की, खोज जारी रहनी चाहिए। गुड लक एंड कीप सीकिंग।

0: अगर अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
1: जी हाँ 416-570-0157 अंजुम कुरैशी सभा के रबते का नंबर है। खुदा न खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, आप बिल्कुल परेशान हो फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम तक 20-25 साल से इसी प्रोफेशन में हैं और मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे। फीस एक्सीडेंट क्लेम हमेशा केस जब सेटल हो जाए उसके बाद ली जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम ये काम कर रहे हैं। तो अगर खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए ये नंबर अपने पास महफूज करें 416-570-0157। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम कुरैशी साहब, खुश आमदीद कहेंगे। अंजुम कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को भी आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और हमेशा आते हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो में आपको अवेयरनेस देने के लिए कि कार एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि जब कभी आपका कार एक्सीडेंट होता है तो गलतियां वहीं से शुरू होती हैं कि आप जो ना बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या जो है बारिश हो रही है, मौसम खराब है, या आप कहीं बहुत जरूरी काम से जा रहे थे तो आदमी जाहिर है कि परेशान हो जाता है। और उस वक्त जल्दबाजी में जो है आप कहते हैं कि चलो जो सारी चीजें हम बाद में कर लेंगे, अभी एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन जो है हम एक्सचेंज कर लेते हैं और पुलिस रिपोर्ट वगैरह के लिए हम बाद में चले जाएंगे। जब आप 911 कॉल करते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि आपका बहुत सीरियस एक्सीडेंट नहीं है, कोलिजन सेंटर जाके आप रिपोर्ट करना है, वो जो टाइम होता है जिस वक्त आपको रिपोर्ट करनी होती है वो कहने को तो ऐसा होता है कि 24 आवर का, लेकिन अगर कोई एक पार्टी भी जाके अपनी रिपोर्ट करवा देती है तो आपको सिर्फ उसकी कॉपी मिल जाती है कि जी अगला पर्सन आया था और वो ये कहकर गया ये कॉपी है, तो फिर आपको अपना वर्जन देने का मौका नहीं मिलता। लिहाजा आपको ये समझना चाहिए कि अगर कार एक्सीडेंट हुआ है तो अब आपको कार की रिपेयर भी चाहिए, हो सकता है आपको इनकम रिप्लेसमेंट भी चाहिए हो, आपको एक्सीडेंट बेनिफिट भी चाहिए हो, तो आप जो ना सारे काम छोड़ के और अपनी रिपोर्ट को जरूर जल्दी से करें, क्योंकि रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपके पास अगर कोई वहां पर विटनेस है, अगर आपके कार एक्सीडेंट में उस वक्त कोई आपके पास आया पूछने के लिए, देखने के लिए, जो वहां मौजूद हो पर्सन जिसने अपनी आंखों से देखा हो एक्सीडेंट, अगर वो आपके पास आता है तो वो आपका बेहतरीन विटनेस है और इंश्योरेंस कंपनी विटनेस को बहुत वैल्यू करती है। तो आपने जो है विटनेस का नाम और नंबर लेके इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करना है जब आप पहली दफा कॉल करते हो। जब आप इंश्योरेंस कंपनी को पहली दफा कॉल करते हो तो बेसिकली आप बताते हो व्हेन वेयर एंड हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड और अपनी इंजरी की तफसील बताते हो। बाज़ औक़ात जब आपका एक्सीडेंट होता है, आप जब इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हो तो उस वक्त आपकी इतनी इंजरी वाजे नहीं होती, आप सिर्फ अपनी गाड़ी की रिपोर्ट करते हो और अगर वो आपसे पूछते हैं कि इंजरी है तो आप कहते हो कि नहीं है, लेकिन 2-4-10 दिन के बाद भी जाकर आपको पता चलता है कि आपकी कंटिन्यूअस मेरी जो दर्द हो रहा है वो बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि आपने झूठ, कंपनी के नोटिस में ये बात है कि बाज़ औक़ात लोगों को देर में जाके दर्द पता चलता है या इंजरी सामने आती है। हमारा काम अवेयरनेस आप तक पहुंचाना, आपका काम मेरा नंबर अपने पास रखना। मैं हमेशा कहती हूँ आपकी अपनी अंजुम कुरैशी ये नंबर अपने पास संभाल के रखें, कोई भी कार एक्सीडेंट हो जाता है एट फॉल्ट नॉट एट फॉल्ट आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157।
1: बहुत शुक्रिया अंजुम कुरैशी साहब आपका और आपसे फ्राइडे फिर बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर नोट कीजिए 416-570-0157। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की है। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, ईरान और गजा में जारी जंगों और पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई माहदे पर तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर सदर एर्दोगान ने अमरीकी सदर से कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी रखना अहम है, सिफारतकारी से फायदा उठाएं, तुर्किया इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सदर एर्दोगान ने मजीद कहा कि इसराइल गजा में फलस्तीनियों पर ऐसे वक्त में हमले कर रहा है जब अमन मनसूबे के दूसरे मरहले का नफाज होना था। और इससे पहले तुर्की के सदर ने मिस्र के जो मक्का अकॉर्ड हुआ था उस इतिहाद में मिस्र के शामिल होने का भी कुछ अंदेशा दिया था और उनका یہ بھی تھا کہ وہ بھی جلد مصر جو ہیں اس میں شامل ہو سکیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ اور بہت سے ممالک بھی مکہ معاہدے میں شامل ہو جائیں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. رات فتح علی خان کی خوبصورت آواز میں آپ کو یہ رات کلام سنوا رہے ہیں. رات فتح علی خان پرفارم کر رہے ہیں 27 سپٹمبر کو اسکوشیا ارینا میں, اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے شاہ زمان خان بھی آ رہے ہیں. فار ٹکٹس یو کین لاگ ان ٹو ٹکٹ ماسٹر ڈاٹ سی اے, یا واجد ملک صاحب کو کال کر لیں 416-827-3333 416-827-3333.

0: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
1: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
0: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
3: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, जहां केरला वैद्या रत्ना पीवी राज, जो कि खानदानी वैद हैं, नबज देखकर जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। बेशुमार मरीज उनकी हर्बल दवाओं से शफायाब हो चुके हैं। अस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सोरासिस और सारी बीमारियों का इलाज करके उनका जड़ से खात्मा करते हैं। ब्रैम्पटन और स्कारब्रो दो लोकेशन से आपको सर्व कर रहे हैं। कॉल कीजिए 6473278111 6473278111
4: DMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1, featuring rock stars Ali Azmat and Mustafa Zahid on August 22nd. Day 2 brings you unforgettable Qawwali Night by Sur Sagar on August 23rd, with free parking and free admission at Ajax Downs, 50 Alexander's Crossing, Ajax, Ontario. Enjoy kids' activities and indulge in delicious South Asian cuisine. For sponsorship or vendor opportunities, visit www.bmkevents.ca or call 416-897-1683.
5: Radio Pakistan Toronto.
6: पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। कनाडा को वेलफेयर स्टेट कहा जाता है और अपने जो अपने शहरी होते हैं या परमानेंट रहने वाले होते हैं, उनको कोशिश गवर्नमेंट की होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराम की जाएं। यूनिको ब्लड एडवाइजरिंग, इससे पहले गवर्नमेंट की ग्रांट्स के हवाले से हम उनका मैसेज आप तक पहुँचाया करते थे नागपाल साहब का, अब गवर्नमेंट की ग्रांट तो ख़त्म है लेकिन जो लोन्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोन्स हैं और बड़ी ज़्यादा उनकी रकम है। आप एक नंबर नोट करें, इंटरव्यू के दौरान आप ये गुफ्तगू सुनिए और उसके बाद आप कॉल कर लीजिए 4372643175 4372643175। नागपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। नागपाल जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
7: थैंक यू जी, आप सभी को हमारी तरफ से सलाम।
6: बहुत शुक्रिया। अच्छा, ग्रांट्स जो हैं वो जाहिर है एक तरीका होता है, गवर्नमेंट का मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते रहते हैं, लेकिन जो लोन की रकम सुना बहुत ज्यादा कर दी है, इस तरह ही है?
7: हाँ जी, लोन टेक्निकली गवर्नमेंट ने डबल कर दिया है।
6: अच्छा,
7: तो अब मैं ये नहीं कहता कि कनाडा में बेस्ट लोन है, मैं ये कहता हूँ कि ये धरती पे बेस्ट लोन है।
6: अच्छा,
7: चाहे आप अमाउंट की रेंज की बात करें जो कि 50,000 से 1,70,000 है, चाहे आप इंटरेस्ट रेट की बात करें जो कि 0% पे है, चाहे आप रीपेमेंट की बात करें, रीपेमेंट स्टार्ट 2.5 साल बाद है, चाहे आप बात करें कि 2.5 साल बाद भी पेमेंट का इंटरेस्ट रेट क्या है, 2.5% पूरे साल का, मतलब लाख डॉलर पे साल का ब्याज सिर्फ $2,500 कहाँ मिलेगा बताइए धरती पे आपको ऐसा स्कीम।
6: सही बात। अच्छा, एक तो क्या कि 2.5 साल तक कुछ पे ही नहीं करना है, मतलब इंटरेस्ट पे नहीं करना है, उसके बाद और फिर कितने अरसे के अंदर पे करना है?
7: 15 साल में।
6: अच्छा, 15 साल में। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, इसमें क्या तरीकेकार है, वही अगर फैमिली ज्यादा है तो ज्यादा फायदा है या क्या तरीकेकार होता है, किस तरह होता है?
7: बिल्कुल जी, यही है। अगर आप PR है, सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन, आपका रिफ्यूजी का केस अप्रूव हो गया है, ओंटारियो में आप रहते हैं, चाहे आप कल ही लैंड कर रहे हैं कनाडा में, आप PR लैंड कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। फैमिली साइज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है तो ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा लोन आता है। फैमिली फाइव को अप टू $170,000 भी आता है।
6: अच्छा।
7: अगर बच्चों की उम्र 11 साल से छोटी है तो और ज्यादा फायदा, आपकी फीस बाहर से कवर हो जाती है, गवर्नमेंट कर देती है।
6: ठीक।
7: और बाकी आपको अलग से लोन मिलता है हाई एंड का।
6: 4372643175 पे मजीद मालूमात ले लीजिए। अच्छा, अब इतना फायदा गवर्नमेंट दे रही है तो फिर तो बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी, बहुत से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इसके लिए।
7: देखिए जी, इसमें डॉक्यूमेंट आपके क्या लगते हैं, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट और आपके इसमें एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स लगते नहीं है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो ज्यादा बेनिफिट है, एम्प्लॉयड है तो भी बेनिफिट है, चाहे उबर ड्राइवर है, सिंगल मदर है, कोई एज लिमिट नहीं है, रिटायर्ड है, मतलब PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन का कार्ड आपके पास हाथ में है।
6: सही।
7: आपके बारे में आ रहे हैं, आपके दिन बदलने वाले हैं, पीछे ना रहिए, आपके आस पड़ोस वाले सारे इस लोन को लेके इन्वेस्ट भी कर चुके और अपना खर्चा भी चला रहे, क्योंकि इस पैसे को आप कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
6: ठीक, अच्छा बुनियादी जैसे आपने बता दिया कि आप सिटीजन हो, पीआर होल्डर हो या आपका रिफ्यूजी केस जो है वो प्रूव हो गया हो, तो उस वो तमाम लोग एलिजिबल हैं और डॉक्यूमेंटेशन आपने बताया कि कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, कोर्सेज क्या हैं, स्किल्ड प्रोग्राम है, जाना पड़ता है, ऑनलाइन है, क्या तरीकेकार है?
7: देखिए जी, हमारा ज्यादातर क्लाइंट्स अंकल आंटी, आज की आपको बात बताता हूँ, आज आपके शो से ये वो हमारे रिटेन क्लाइंट है, वो हमारे ऑफिस आए, आप मान लीजिए इनका नाम आप मान लीजिए खान साहब है,
6: ठीक है,
7: तो खान साहब हमारे ऑफिस में आए, कहते मेरी जगह ना कोई और क्लास लगा रहा है मेरे नाम से,
6: ऐसा तो नहीं,
7: तो कहते मेरे नाम से कोई और बंदा क्लास लगा रहा है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस है ना पूरी ऑनलाइन, तो हमारे ऑफिस में आए, तो मेरी स्टाफ मेंबर, मैंने कहा क्या इशू है, कहते सर किसी और कोई और क्लास लगा रहा है इनकी, खान साहब लिखा रहा है, जैसे लिखा था ना जूम पे कि कौन लगा रहा है, तो बाद में पता लगा टीचर का नाम भी खान साहब है।
6: अच्छा अच्छा, सही है, तो वो लगते हैं
7: मतलब वो टीचर को भी कह रहे तू क्लास लगा रहा है, अभी क्लास लगा रहा हूं।
6: तो
7: सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप आसान से अटेंड करते हैं, 2-3 घंटे मंडे टू फ्राइडे आप लाइक तालीम हासिल करते हैं, आखिरी में सर्टिफिकेट मिलता है बिजनेस मैनेजमेंट का, अकाउंटिंग का, अपनी मर्जी से प्रोग्राम चूज करें, फंडिंग हासिल करें।
6: 4372643175 4372643175। अच्छा, कोई क्रेडिट चेक वगैरह भी होता है इनके लिए जो लोग अप्लाई करते हैं?
7: बिल्कुल, क्रेडिट चेक भी नहीं होता, और इसमें अगर आपका क्रेडिट खराब है, जीरो भी है स्कोर आपका, आप एलिजिबल है, और आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं, स्टाफ रेडी है कॉल्स के लिए, प्रॉपर ऑफिस है, 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, 7 बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं, 8 साल में हजारों को असिस्ट कर चुके हैं।
6: ठीक है, 4372643175 पे आप अभी कॉल कर लीजिए। अच्छा, आपकी फीस कितनी है और कब देनी होती है?
7: जी, काम होने के बाद $199, $200।
6: ओके,
7: कुछ लोग कहते हैं फीस कम क्यों है, भाई साहब कोई सेटिंग नहीं है, कोई बैंक नहीं है बीच में, यहाँ पे साफ काम है, कोई डॉक्यूमेंट एडिट नहीं हो रहा, मेरी मेहनत नहीं लग रही, आपके कागज लाने में पैसे ज्यादा क्यों लूंगा, कमीशन कोई है नहीं, सारा साफ काम साफ तरीके से कर रहे हैं, हुकूमत फंडिंग दे रही है, बैंक तो दे नहीं रहा आपको फंडिंग, यहाँ पे कागज हुकूमत के पास आपके पास पहले ही है, वहां पे क्या कारीगरी करेंगे आप, तो फंडिंग हासिल करें, अभी कॉल करें, एस्टीमेट ले, ऑफिस आए, बैच स्टार्ट है 26 तारीख को, 20 तारीख तक ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएंगे सारे नेम्स।
6: वेरी राइट, कॉल कर लीजिए 4372643175 4372643175। कुछ और आप ऐड करना चाहें नागपाल जी?
7: हर 2 साल में गवर्नमेंट की एजुकेशन की पॉलिसी चेंज होती है, अगर आप आज एनरोल करते हैं तो अगस्त 2028 में जब चेंज होगा पॉलिसी का, 2 साल बाद, उससे पहले आपकी सारी फंडिंग आ जाएगी आपके खाते में, ठा करके फंडिंग आपके खाते में आती है, हमारी फीस काम होने के बाद में है, $200 भी आपसे काम होने के बाद लेते हैं, और 2 साल का कोर्स है तो 200×2 $400 फीस है, कोई हिडन चार्जेस, कोई मीठी बातें, कोई इसमें कारीगरी नहीं है, कारी मतलब गारंटी लेते हैं हम, इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं, सब लोग बड़े खुश है। नंबर नोट करें, अभी कॉल करें 4372643175।
6: बहुत शुक्रिया आपका, कल फिर आपसे बात करते हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर नोट कीजिए 4372643175। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन बात आगे बढ़ सकती है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन के खत का जवाब भी देंगे। टेलीविजन प्रोग्राम में आज गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज की मुलाकात से बर्फ पिघलेगी, मामला आगे चलेगा, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, उन्हें पहले से बेहतर तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। फाकी वजीर ने मजीद कहा कि मानी पीटीआई किसे इस मुतलिक हमें फिक्र है और हम इनके लिए दुआगो हैं, उनके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अपोजिशन रहनुमाओं से तफसीली बात हुई है, मैं समझता हूं बात आगे बढ़ सकती है, बानी पीटीआई की अहलिया से मुतवातर मुलाकातें उनकी आपस में बानी की और उनकी अहलिया की होती रहती। अच्छा, आज उनकी रिपोर्ट भी जो है वो भी सबमिट हुई है, जिसमें उनकी बेचैनी के हवाले से कहा गया कि उनको है, लेकिन उनकी आंख जो है वो उनकी इमरान खान साहब की आंख जो है उसमें बेहतरी आई है। चलिए इस पर आगे चल के बात करेंगे, कमर्शियल ब्रेक, प्रोग्राम वापस आते हैं, स्टे ट्यून। बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में, 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज, जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में, 9052829868।